कल कोर समुंदर में बूटत थे, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार जह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो, जग तारन को अव...

हम पापी बलवंशिया मेरी जिंदड़िए भारद्रोही ठग माया राम फड़पागी गुर पाया मेरी जिंदड़िए गुरपूरे गत मिथ पाया राम गुर अमृत हर मुख चोया।

0: जाको हार रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा आत्म जने सगल वस ताकै, जाका सतगुर पूरा जाको हार रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा आत्म जने सगल वस ताके, जाका सतगुर पूरा ठाकुर गाइए आत्म रंग, सरनी पावन नाम त्यावन सहज सुमावन संग, ठाकुर गाइए आत्म रंग, सरनी पावन नाम त्यावन सहज सुमावन संग, रहाओ जन के चरण बसे मेर यही अरे, संग पनीता देही जन की धूड़ देहो कृपा निद, नानक कै सुख यही जन के चरण बसे मेरे ही अरे, संग पनीता देही जन की धूर देहो कृपा निद, नानक कै सुख यही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पंजवां, जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा आत्म जने सगल वस ताके, जाका सतगुर पूरा ठाकुर गाइए आत्म रंग, सरनी पावन नाम त्यावन सहज सुमावन संग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी साहिब हंगुर प्रसाद, जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवे जे सोची लख वार, भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया भार, किव सचारा होई है किव कूड़े टुटे पाल,
1: हुक्मरे जाई चलना नानक लिखिया नाल,
0: हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहा जाई,
1: हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई,
0: हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है,
1: एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाई है,
0: हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई,
1: नानक हुक्मे जे बुझै ता हम मैं कहे ना कोई,
0: गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान,
1: गावे को गुण वडियाई चार, गावे को विद्या विखम विचार,
0: गावे को साज करे तनखे गावे को जीले फिर दे,
1: गावे को जपे दिसे दूर गावे को वेखे हागरा दूर,
0: कथना कथिन आवे तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट,
1: देंदा देले दे थक पाहे जुगा जुगंतर खाई खाई,
0: हुक्मे हुक्म चलाहे राहु नानक बिकसे बेपरवाहो,
1: साचा साहिब साच नाही पाख्या पाओ अपार,
0: अख मंगे देह दे दात करे दातार,
1: फेर के अग्गे रखिए जित से दरबार,
0: मुह के बोलन बोलिए जैसों तरे प्यार,
1: अमृत वेला सच नाउ वडियाई विचार,
0: करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार,
1: नानक एवे जानिए सब आपे सचियार,
0: आपया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए,
1: जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविये गुणी निदान,
0: गाविये सुनिए मां रखिए भाओ दुख पर हा सुख कर ले जाए,
1: गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख रिया समाई,
0: गुर ईसर गुर गोरख बरमा गुर पार्वती माई,
1: जे ओ जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई,
0: गुराक दे बजाए सबना जिया का

0: निरंकार
1: असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तप ताव
0: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास
1: असंख भक्त गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार
0: असंख सूर मोह पक्षार असंख मोहन लिवलाए तार
1: कुदरत कवन कहा विचार बारे न जावा एक बार
0: जो तुद भावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार
1: असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर
0: असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे
1: असंख पापी पाप कर जाहे असंख कुड़ियार कुड़े फराहे
0: असंख मलेश मल पखाहे।

0: ही को थाओ।
1: कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक बार।
0: जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार।
1: भरिए हाथ पैर तन देहे, पानी तो तय उतरस खे।
0: मूत पलीती कपड़ होए, जे साबून लइए वो तो है।
1: भरिए

0: को खाए को आखण पाए जाने जेथिया मोह खाए
1: आपे जाने आपे दे आखे सेपे के
0: जिसनु बख्शे सिफत सलाह नानक पात शाही।

जीवा, चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा, सो हर मेरा अंतर जामी, भगत जना कै संग स्वामी रहाओ। सुन सुन अमृत नाम ते आवा, आठ पहर तेरे गुण गावा, पेख पेख लीला मन आनंदा, गुण अपार परमानंदा, जाकै सिमरन कछ भउ ना व्यापै, सदा सदा नानक हर जापै। सूही महला पंजवा, गुर कै बचन हृदय ध्यान तहारी, रसना जाप जपो बनवारी, सफल मूर्त दर्शन बलहारी, चरण कमल मन प्राण अदारी रहाउ। साध संग जन मरण वारी, अमृत कथा सुन करन अधारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी, दृढ़ नाम दान इशना सचारी, कहो नानक एह तत विचारी, राम नाम जप पारि उतारी। सूही महला पंजवा, लोभ मोह मगन परादी, करन हार की सेवना सादी, पतत पावन प्रभ नाम तुम्हारी, राख लेहो मोय निर्गुण यारी रहाउ। तू दाता प्रभ अंतर जामी, काची देह मानक अभिमानी, स्वाद बाद ईर्ख मद माया, इन संग लाग रतन जन्म गवाया, दुख भंजन जग जीवन हर राया, सगल त्याग नानक सरणाया। सोही महला पंजवा, पेखत चाखत कहियत अंदा, सुनियत सुनिए नाही,

निकट वस्त को जाने दूर है, पापी पाप कमाही। जो कुछ करज तछूटे प्राणी, हर हर नाम जप अमृत बानी रहाओ। कूर महल सदा रंग राता, संग तुम्हारे कछु न जाता। रखे पुचार माटी का भांडा, अत को चील मिले जम डांडा। काम क्रोध लोभ मोहे बादा, महागर्त महने करत जाता। नानक की अरदास सुनी जय, लूपत पाहन प्रभ मेरे ली जय। सूही महला पंजवा। जीवत मरै बूझै प्रभ सोए, तिस जन कर्म प्राप्त होए। सुन साजन इउं दूतर तरियै, मिल साधु हर नाम उचरियै। रहाउ एक बिना दूजा नहीं जानै, घट घट अंतर पार ब्रह्म पछानै। जो कुछ करै सोए भल मानै, आद अंत की कीमत जानै। कहो नानक तिस जन बलहारी, जाकै हिरदै बसे मुरारी। सूही हल्ला पंजवा। गुर परमेश्वर करने हार, सगल सृष्ट को दे आधार। गुर कै चरण कमल मन त्याय, दुख दर्द इस तन ते जाय। रहाउ पव जल डूबत सतगुर काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गांडै। गुर की सेवा करहु दिन रात, सुख सहज मन आवे शांत। सतगुर की रैन बडभागी पावै, नान गुर का सद बल जावै। सूही महला पंजवा। गुर अपने ऊपर बल जाइयै, आठ पहर हर हर जस गाइयै। सिमरा सो प्रभ अपना स्वामी, सगल कटाका अंतर जामी। रहाउ चरण कमल स्यों लागी प्रीता, साची पूरन निर्मल रीता। संत प्रसाद वसे मन माही, जन्म जन्म कै किल विखजाही। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगै संत रवाला। सूही हल्ला पंजवा। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा,

हस्त रथ अश्व पे पवन तहेज तणी पूमण चतरांगा सांग न चालियो इन मह कशु ऊठ सदायो नांगा।

सोचा सोच न हो वही जे सोचे लखवार, चुपा चुप न हो वही जे लाए रहा लेवतार, सुखियां भुख न

काय कर्मकांड का यु धर्म ज्ञान खंड का आख हो कर्म केते पुण पाणी वै संतर केते कान महेश हो केते बर मैं का अर्थ घड़ी।

सोदार आ गया समल्ला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोदार तेरा किया सो करके आज वैसा संभालने वाजे तेरे नाद नेक शंका किते तेरी वा बनहारी किते तेरे राग प्रेसो कहिया किते तेरी गावनहारी गावन तुदनो पण पाणी वसंतर गावे राजा धर्म दुआरी गावन तुदनो चित गौत लिख जाना लिख लिख धर्म विचारी गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सुन तेरे सदा सवारी गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवत्या दा नाली गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साधु विचारी गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारी गावन तुदनो पंडित पांड रखी सुर युग जुग।

सुख सुखम बिसरा मेरी माए साचा साव साचे नाय राव साचे नाम की तल बड़ी आई आख तक कीमत नहीं पाई जे सब मिलकर आखण पाही बड़ा ना हो।

हर के जनन सतगुरु सतप्रगा बिनो करो गुरु पास हम कीरे किरम सतगुरु सर नाई कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई, हर की तमरीरा रास रहाओ। हर जन के बड़ भाग बड़े रे जन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले त्रिवता सहे मिल संगत गुण प्रकाश। जन हर हर हर अस नाम न पाया ते भाग्यहीन जंपा, जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवै त्रिग जीवास। जन हर जन सतगुरु संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखा, तन तन सतसंगत जित हरस पाया। मिल जन नानक नाम प्रकाश रागु जी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उदम जा आहर हर जीव भरिया। सैल पत्थर मह जन तो पाए था कार्य जगवा के कर धरिया।

स्वभाव मधे पुला बिसरा है तेरा चेतना आवे नाओ। श्री राग महला पहला। कोट कोटि मेरी यार जापन व्याओ चंद सूर दुर्ग पे ना देखा सोपने सो न था। कोट कोटि मेरी

परिपरिपायदा दुख भुखने व्यापी जे सुखदाता मन होए केती काम सीजे जात सचा सोए जे तू रखे हाथ दे मार न सके कोए सुखदाता गुरु सेविया सब आपन कड्डे तोए सेवा मंगे सेव गोलाई अपनी सेव साधु संग भगत टूटे भावा दे सब के बास कर तो साहेब है आपे कन करे साधु के बुलाने मन ससा परे एको से सजनो एको भाई में जे इस मगरी एक तैयारी एक सो मन माने तो आने चल जी तो सच खाना सच पैर ना टेक तो नाक सर की राग मल्ला पंजवा

सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहब सचा सोए साध संगत का साध संगत होए निर्मला कटिया जम की बास सुदा तब पंजनों त्यागे करे अरदास मेहर करे इस मेहरबानता कार जा विरास तो वह दुखानी उच उचा था बना जे ना वार हकीम कहना सकाओ नानक को प्रमय कर सा देवा बना श्री राग मल्ला पंजवा नाम त्याय सो सुखे ते समख लोए पूरे को ते पाइए परगट सब नी लोए साध संगत कह कर वसे एको सच्चा सोए मेरे मन हरा नाम ते आए नाम साई सदा सांगा पे आगे लै छड़ाए

कुछ हो जाए बताऊ चले जाकर होए राजन जाने अपना दर कटाक न होए नानके कुरावरिया दूजा वरना कोई श्री राग मिलना पहला गुत निर्मल जानिए निर्मल ते शरीर निर्मल साचो मन बसे सो जाने पीर सहजे ते सुख अगलो ना लागे जाम तीर भाई रे मैल ना निर्मल जल ना

पुष्कर कमाओ शब्द लाई मन वसे यो में तो चल जाओ सजीव मिलाओ ना सच सच मिलाओ शब्द रहते से ने मिले ताज काम करो धन का हर नाम सरान सद सदा रखे उधार सुखो मन वसारी ये सब जिया का धार शब्द मरे सो मरे फिर मरे दूजी बार शब्द ही पाई है हर नामे लगे प्यार शब्द ही ते पाई और नमे लगे प्यार में शब्द सुख बिन शब्द जग भूला फिर मर जन्मे बार बार सब सलाई आपको बटवडेरी हुई गुर बिन आप न छीनिए कहे सुने गया हुई नानक शब्द विशाणी है ओमे करे ना कोई जी राग मेला पहला बिन फिर धन शिकारी जो बन बाद खुआर न माने सुख से चढ़ी।

सहस लाई सदा सदा सहस मातृ गाय सहजे गुण उचराय भक्त करे लिवलाय शब्द ही हर मनु सह रसना रसकाय सहजे काल बडारिया स शरणाई पाए सहजे हर नाम रसिया सहजे काल बडारिया स शरणाई पाए सहजे हर नाम मन वसिया सची कर कमाए सेवट पागी जिन पाया सहजे रे समाए माया विसहज न उपजाय माया दूजा पाए मनु कर कमावणे हो मन जल जलाए जमन मना चूकई फिर फिरिया वह जाए त्रिगुणा विच सहज न पाई त्रिगुण परम पुलाए पढ़िया गुणिया क्या कथिया जमुनो कुथा जाए चौथे पद में सहज है गुरु पल पाए निर्गुण नाम निधान सचे सो जियो गुणवंती सलाया सचे सची सोए पुरिया सहज मिलाए सी शब्द मिलावा होए बिन सहज सब अंध है माया को कुमार सहजे सो जी पई सचा शब्द पार आपे बख्श मिलाए पूरे गुरु करतार सहजे दिश पछाणी निरपोजोत नकार सबना जिया का ज्योति जो मिलावन हार पूरा जब सुनाइया जदांतरा पारावार।

का आचार्य एक सुनो रे पंडिया आप किस कहना जाई सुन कणक धर्म जन मोहित त्रिपुण मेखली लाई राजा राम अनकी बाजा जागी तृष्णाद लिव लागै राउ पाठी गगन सिंघिया चुंगिया कणकल सिख पाया तिसमें धार चुआत निर्मल रसम रस चुआया एक जो बात रूप बनी है पम प्याला साजिया तीर मन एक जोगी कहो कवन है राजा ऐसे ज्ञान प्रगटा प्रखो तुम कहो कवी रंग राता और दुनी सब पर बुलानी मन राम रसायन माता श्री राग बाणी भगत बेणी जियो की पैरिया कर गावना इको ओंकार सतु गुर प्रसाद रे नर गर्भ कुंडल जम आशत और त्या लिव लागा मेरे तू पिंड पदमंदना ऐन सु एक ज्ञान सुनागा ते दिन संभल कष्ट मान दुख अब अंक विसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नर मनो विसारिया फिर पछतावेगा मूड़िया तू कवन कुमित भ्रम लागा चेत राम ना जमपुर जाएगा जान बिचरा नरादा रहाओ बाल विनोद चिंद्र सलाका किन किन मोह व्यापै रस में समेत अमृत विचाखी तो पांच प्रगट संता पै जब तब समझ छोड़ सुकृत मत राम नाम नारा दिया उछलिया काम काल मत लागी तो आन सख्त गल बांधिया तरण तेज पर त्रैमक जो है सर्प सरना पछाणिया अनुत काम महाभूल है पापो न पछाणिया सो संभ देख ए मन गर्भ राम रिधाते खोया और मर्त माया मन तोले तो भाग मुख जन्म गुआ तो भाग मुख जन्म बिगोया पुंडर केस कुसुम ते तौले सब ताल की बाणी लोचन श्रम बुद्ध बल नाठी ता काम पव समाधानी ताते बिखा भई मत पावस काया कमल खुलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछा पिछाणा निकुटी दे देख तुने बुझाया मान करतने बूझा लालच करा जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझा थाका तेज उड़िया मन पंखी कर अंग न सुखाई बेणी कह सुनो रे भगतो मरण मुक्त केन पाई श्री राग तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कानंग काटक जल तरंग जैसा जो पै हम ना पाप करंता हे अनंता पात पाव नाम कैसे हुंता रहो तुम जो नायका छो अंतर जामी प्रभ ते जान जानी जाय जानते स्वामी शरीर अराधा मुखा विचार देहु रविदास समदल समझावै को राग माज चौपदे कर पहला महला चौथा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर कार मूर्त जुनी सह पंग गुर प्रसाद हर हर नाम हर मन पाया पगी हर नाम त्या गुरपुरा हर नाम सिद्ध पाई को बिरला गुरमत चला जी ओम मैं हर हर खच लिया अपन पला मेरा प्राण सिखाई सदनाल चला गुरपुरा हर नाम दड़ाया हर नेचल हर तन पला जी ओम हर हर सज्जन मेरा प्रीत मराया कोई आण मिलावा मेरे प्राण जीवाया हो रह न सका बिन देखे प्रीतमा मैं नीर वाहे वह चला जी ओम सतगुरु मित्र मेरे बाल सिखाई हो रह न सका बिन देखे मेरी माई हर जी कृपा करो गुरु मेलो जन नानक हर तन पला जी ओम आज महला चौथा महासूदन मेरे मंत्र प्राणा और बिंदु जावर न जाना कोई सज्जन संत मिलावट पागी मैं हर प्रभु प्यारा दसा जी ओम हो मंत्र को जी भाल भलाई क्यों पैरा प्रीतम मिला मेरी माई मिल सत्संग खोज दसाई वे संगत हर प्रभु सा जी ओम मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला हम बालक दीन करो प्रतपाला मेरा माँ पिता गुरु सतगुरु पूरा गुरु सजाल मेल कमल वेगा सा जी ओम मैं मेरे गुरु देखे नींद आवा है मेरे मंत्र वेदन गुरु ब्रह्म लगावा है हर दया करो गुरु मेलो जन नानक गुरु मिल रहा जी ओम माज महला चौथा हर गुण पढ़िया हर गुण गुणिया हर हर नाम कथा ने सुनिया मेरे सत्संग हर गुण गाए भोजन दूतर तरिया जी ओम आओ सखी हर मेल करे हा मेरे प्रीतम का मैं दे स्नेहा मेरा मित्र सगा सो प्रीतम भाई मैं दसे हर नर हरिया जी ओम मेरी बेतन हर गुरु पूरा जाना और हर नसका बिन नाम बखाने मैं औकत मंत्र दी जा गुरु पूरे मैं हर नाम धरिया जी ओम हम चातुर के दीन सब कुछ सुनाई हर नाम बून बुखाई हर जल नद हर जल निध हम जल के मीने जल नानक जल बिन मरिया जी ओम माज महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे पाई मेरा हर प्रभु दसो मैं भुख रगाई मेरी श्रद्धा पूर्जग जीवन दाते मेरे हर दर्शन मन भीजा जी ओम मेरे सत्संग बोली हर बाणी हर हर कथा मेरा मन पाणी हर हर अमृत हर मन पावे मेरे सतगुरु अमृत पीजा जी ओम बड़ भागी हर संगत पावे।

आपे जी जंत्र सब तेरे तापे तुझ बिना बना कोई करते मैं तरे उठ तुम्हारी जियो रसना जब जब जिया स्वामी पार ब्रह्म प्रभंत्र जामी जिन से व्यत नहीं सुख पाया सो जन्म जुए हारी जियो नाम अवखल जिन जंत्र पाया जन्म जन्म करो गवाया हर कीर्तन गाओ दिन राति सब ले आया कारी जियो त्रिष्टार अपना दास वारिया कड़कड़ अंतर पार ब्रह्म नमस्कार एक बिन हो दूजा नाई बाबा नानक मत सारी जियो माज महला पांच माऊ मंत्र राम प्यारे सरस्वती जय अपना वारे आठ पैर गोविंद गाया विसरण कोई सासा जियो सोई साजन मीत प्यारा राम साध संग विचारा साधु संग त्री जय सागर कटिया जमकी फासा जियो चार पदार्थ हर की सेवा पार जा जब लखो पेवा काम क्रोध किर गुर काटे पूर्ण हो आसा जियो पूर्ण भाग पाए जिस प्राणी सा संग मिले सारंग पाणी नांग नाम बसाख जिस अंतर प्राण प्रवाण ग्रस्त उदासा जियो माज महला पांचवा सिमरत नाम हृदय सुख पाया कर कृपा भक्ति प्रगटाया संत संग मिल हर हर जपया बिन सयाल सरोगा जियो जाका करे नव निधर पाई जिस प्रभु लिखा जिस प्रभु कुमाई ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर पव सभना गल्ला जोगा जियो खिर मैं थाप था अपनहारा आव कंति आप सारा लेप नहीं जग जीवन दाते दर्शन डिठे लैण बजोगा जियो अंचल लाए सब शिष्ट त्राई अपना नाम आप जपाई गुरबोध पाया कृपा दे नानक तो संजोगा जियो माज महला पांचवा सोई करना जे आप कराए जिथे रखा सा भरी जाए सोई सियाणा सो पतवंता हुकुम लगा जिस मीठा जियो सा परोई एक ताके जिस लाए लाए लाए सो चरणी जिस लाए लाए सो चरणी लागा ऊन कमल जे सोई प्रकाश तिन सर्व निरंजन डीठा जियो तेरी महिमा तू हां जाना अपना आप तू आप जाना हो ब्रहारी संतन तेरे जिन काम करो लो पीठा जियो तू निर्वैर संत तेरे निर्मल जिन देखे सब उतरे करमल नानक नाम त्याय तय जीव मिनसा भ्रम पोतीठा जियो माज महला पांचवां झूठा मंगण जे कोई मांगा तिसको मरते कड़ी न लागा पार मजो सो सद ही सेव है सो गुर मिल नेचल कहना प्रेम भगत जिसके मन लागी गुण गावै अनदिन जागी बां पकड़ते स्वामी मेले जिसके मस्तक लैणा चरण कमल भक्ता मन उठे बिन परमेश्वर सगले मुठे संत जना की धूड़ नित माचा नाम सचे का गहना उठत बैठत हर हर गाइया सिमरत वर नेचल पाई नानक प्रभु दयाला तेरा कीता सहना राग माज अष्टपदिया मुला पहला घर पहला एक ओंकार सत गुर प्रसाद शब्द रंगाए हुकुम समाए सची दरगाह महल बुलाए सचे दीन दयाल मेरे साहबा सचे मन पति आवणिया हो वारी जी ओ वारी शब्द सुहावणिया अमृत नाम सदा सुखदाता गुरमती मन वसावणिया रहाओ ना को मेरा हो किसके रा साचा त्रिपुण साचा ठाकुर त्रिपुण मेरा हो मैं कर कर जाए कणेरी करे अवगुण पछतावणे आम ना को मेरा हो किसके रा साचा ठाकुर त्रिपुण मेरा हो मैं कर कर जाए कणेरी करे अवगुण पछतावणे आम हुक्म छाणा सो हर गुण बखाणा गुरु का शब्द नाम निशाणा सभना कादर लेखा सच्चा है झूठ नाम सुहावणे आम मन को पूरा ठोर न पाए जमदर बद्दा चोटा काए बिना मैं को संग्रह साथी मुक्ते नाम ते आवणे आम साकत कूड़े है सच न पावे दुबदा बदा आवा जावे लिखिया लेख न मेटा कोई गुरमुख मुक्त करावणे आ पीड़ा फिर जातो नाही झूठ पिछ नीरो वै ताई अवगुण मुठी मैल न पाए अवगुण गुण बिछावणे आ पीड़ा जिन जाता प्यारा गुरमुख पूजा तत विचारा आवण जाना ठाकुर हाय सच्चा नाम समावणे आ गुरमुख पूजा कत कहावै सच्चे ठाकुर साचो पावै नानक साच कह बेनती सच मिलै गुण गावणे आ माज महला तीजा करम होवै सतगुरु मिलाए सेवा सुरत शब्द जितनाए हुक्म होमै मार सदा सुख पाया माया मोह चुकावणिया हो वारी जी हो वारी सतगुरु कै बलहारणिया गुरमति प्रकाश होआ जी अनदिन हर गुण गावणिया रहाउ तन मन खोजे तानो पाए तब तरा खटा ग्रहाय गुरु की बाणी अनदिन गावै सजे भक्त करावणिया इस काया अंदर वस संखा गुरमुख साच मिले तेखन दरवाजे दसवें मुक्त अन शब्द बजावणिया सच्चा साहेब सची नाई गुर प्रसादी मन वसाई अनदिन सदा राय रंग रहता दर सच्चा सोगी पावणे दर सच्चा सोजी पावणे पाप पुन की सार न जानी दूजा लागी भरम भुलाणी पाप पुन की सार न जानी दूजा लागी भरम भुलाणी अग्ञानी अंधा मगर जाने फिर फिर आपण जावणे गुर सेवा ते सदा सुख पाया हमां मेरा ठाकुर आया गुर सागी मिटिया अंधियारा बजर कपाट खुलावणे हो मैं मार मन वसाया गुर चरणी सदा चितलाया गुरु प्रभते मंत्र निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया जीवन मरना सब तू दै ताई जिस पक्ष तिस दे वड़ियाई नानक नाम त्याए सदा तू जमण मरण सवारणिया माज महला तीजा मेरा प्रभ निर्मल अगम पारा बिन तकड़ी तोला संसारा गुरमुख है सोई पूजा गुण गुण कै गुणी समावणिया हो वारी जियो वारी हर का नाम मन वसावणिया जो सच लागे से अन दिन जागे दर सचा सोभा पावणिया रहाओ आप सुना तै आपे वेखा जिसनु करे सोई जन लेखा आपे लाए लए सो लागै गुरमुख सच कमावणिया
जिस आप भुलाए सो किथे अत पाए, पूर्व लिखिया सो मिटना ना पाए, जिन सतगुर मिलिया से फटभागी, पूरा करम लावणे आ पेई अणहतरे अंदन सुती कंत विसारी, अवगुण मुती अंदन सदा फिरिया मिल लादी, बिन पर नींद ना पावणे आ पेई अणा सुखदाता जाता, हुमा मार गुर शब्द पछाता, से सावी सदा फिर नावे, सत शिंगार बनावणे आ लख चौरासी जी उपाए, जिसनों करे ते गुरु मिलाए, किरवे कर सदा जन निरमंत्र सच्चा नाम सुहावणे आ। लेखा मांगा ता करंदी आ, सुखनाए बंधु आती आ, आपे बख्श लए प्रभु साचा, आपे बख्श मिलावणे आ। आप करे ता आप कराए, पूरे गुरु का शब्द मिलाए, राम नाम मिले वणे आई, आपे मेल मिलावणे आ। माज महला तीजा, इको आ फिरा परछन्ना, गुरमुख वेखा ताई मन पिन्ना, तृष्णा ताए सह सुख पाया, इको मन वसावणे आ। हो वारी जियो वारी, एक स्यों चित लावणे आ, गुरमती मन एकत करे आया, सच्चा रंग रंगावणे आ। रहाओ ये जग भूला तै आप लाया, एक विसार दूजा लो पाया, अन्य सदा फिरा भ्रम भूला, बिना वैद को पावणे आ। जो रंग राते करम विताते, गुर सेवा ते जुग चारे जाते, जिसनों आप देव डे आई, हर का नाम सुमावणे आ। माया मुहर चेतन आई, जम प्रबुद्धा दुख सहाई, अन्ना भूला कृष्ण तन आवै, मन को पाप बचावणे आ। एक रंग राते जो तुद आप ले बुलाए, पाए भगत तेरा मन पाए, सतगुर सेव सदा सुखदाता, सब इच्छा आप जावणे आ। हर जो तेरी सदा शरण आई, आपे बख्शे देव डे आई, जम काल तिस नेड़ न आवै, जो हर नाम ते आवणे आ। इंद्र अंध राते जो हर पाए, मेरा प्रभ मेले मेल मिलाए, सदा सदा सचे तेरी शरणाई, तू आपे सच बजावणे आ। जिन सच जाता से सच समाणे, हर गुण गावे सच बखाणे, नानक नाम रते बैरागी, निज कर ताड़ी लावणे आ। माज महला तीजा, शब्द मरा समूहा, जापै कारणा चापै, दुखना संतापै, ज्योति विच मिल जो समाणी, सुन मन सच समावणे आ। हो वारी जियो वारी, हर कन सोभा पावणे आ, सतगुर सेव सच चित लाया, गुरमती सह समावणे आ। रहाओ काया कच्ची कचा चकीर हंडाए, दूजा लागी मैल न पाए, आंदन जल्दी फिर दिन राती, बिन फिर बहुत पावणे आ। देही जात ने आगा जाए, जिथा लेखा मंगिया तिथा छुट्टा साच कमाए, सतगुर सेवन से धनवंते, ऐथा उथा नाम समावणे आ। पै पाए शिंगार बनाए, गुर प्रसादी मैल कर पाए, आंदन सदा रवै दिन राती, मजीठा रंग बनावणे आ। सबना फिर बसा सदा नाले, गुर प्रसादी को नंद नाले, मेरा प्रभु जो उच्चा कर कृपा मिलावणे आ। माया मोए ए जाग सुता नाम विसार, अंत विगोता जिसते सुता सो जा गाए, गुरमत सोजी पावणे आ। अपयो पिया सो परम गवाए, गुर प्रसाद मुक्त गत पाए, भगती रता सदा बैरागी, आप मार मिलावणे आ। आप पाए धंधा लाए, लाख चौरासी रिजक आप पढ़ाए, नानक नाम ते सचराते, जो ते सुपावा सो कार करावणे आ। माज महला तीजा, अंदर हीरा लाल बनाया, गुरु का शब्द पर पुरकाया, जिन सच पल सच बखाणा, सच कसवटी लावणे आ। हाँ वारी जी ओ वारी, गुर की बाणी मन सामने आ, अंजन माए निरंजन पाया, ज्योति ज्योत मिलावणे आ। रहाओ इस काया अंदर बहु पसारा, नाम निरंजन अतगुण पारा, गुरमुख होया सोई पाए, आपे बख्श मिलावणे आ। मीरा ठाकुर सच दृढ़ाए, गुर प्रसादी सच चितलाए, सचो सच वरता सब थाई, सचे सच समावणे आ। वे प्रभा सच मेरा प्यारा, किरवे खपगण काटन हारा, प्रेम प्रीत सदा ध्याई है, पै पाए भगत दृढ़ावणे आ। तेरी भगत सची जे सचे भावै, आपे देना पछोतावा, सबना जिया काय को दाता, शब्दे मार जीवावणे आ। हर तुद बाजो मैं कोई नाई, हर तुद सेवी ते तो सलाई, आपे मेल लाओ प्रभु साचे, पूरा करम तू पावणे आ। मैं होर ना कोई तुद जेहा, तेरी नदी सीस देहा, अंदर सार समाल हर रखे, गुरमुख सह समावणे आ। तू जेड़ मैं होर ना कोई, तुद आपे सिरजी आपे गोई, तू आपे घड़ भन सवार, नानक नाम सुहावणे आ। माज महला तीजा, सबकट आपे भोगण हारा, लख वरत अगुम पारा, गुरु का शब्द मेरा हर पव त्याई है, सहजे सह समावणे आ। हो वारी जी ओ वारी, गुरु शब्द मन वसावणे आ, शब्द सूजा तो मन सो लूजा, मन सा मार समावणे आ। रहाओ पंच दूत मोह संसारा, मन मुखंदे सोधन सारा, गुरमुख होया सो अपना घर राखा, पंच दूत शब्द पचावणे आ। एक गुरमुख सदा सचा रंग राते, सहजे प्रभु सेवै अंदर माते, मिल प्रीत सचे गुण गावे, हर दर सोभा पावणे आ। एकम एक आप पाया, दुविधा दूजा त्रिविध माया, चौथी पौड़ी गुरमुख ऊची सचो साच कमावणे आ। सबह सचा जे सचे पावै, जिन सचा जिन सच जाता सो सह समावै, गुरमुख करणी सचे सेवै, सचे जाए समावणे आ। सचे बाजो को अवरा दूआ, दूजा लाग जग खप खप मुआ, गुरमुख सो एको जाणै, एको सेव सुख पावणे आ। जी जन सब शरण तुम्हारी, आपे धर देखा कच्ची पक्की सारी, अंदर आपे कार कर आए, आपे मेल मिलावणे आ। तू आपे मेले वेख्या अधूर, समय आप रे भरपूर, नानक आपे आ वरता, गुरमुख सोजी पावणे आ। माज महला तीजा, अमृत बाणी गुर की मीठी, गुरमुख मेला किन चख डीठी, अंतर प्रगास महारस पी मैं दर सचा शब्द बजावणे आ। हो वारी जी ओ वारी, गुरचरणी चित लावणे आ, सतगुरु है अमृतसर साचा, मना वै मैल चुकावणे आ। रहाओ तेरा सचे किने अंतर पाया, गुर प्रसाद किने विरला चित लाया, तू सला न रजा कबू, सचे नाम है की भुख लावणे आ। एको वेखा वरना बिया, गुर प्रसादी अमृत पिया, गुर का शब्द तिखा नवारी, सचे सुख समावणे आ। रतन पतात पल त्यागा, मन खंदा दूजा पै लागा, जो बीजा सोई फल पाए, सुपना सुख न पावणे आ।
अपनी कृपा करे सोई जान पाए गुरु का शाब्द मन वसाए अन्दर सदा रहे पै अंदर पै मार परम चुकावणे परम चुकाया सतसुख पाया गुरु प्रसाद परम पाया अंतर निर्मल निर्मल बाणी हर गुण सहजे गावणे सिमर साध वेद बखाणा भरमे पूला तातना जाना बिन सुख सेवे सुख न पाए दुखो दुख मावणे आप करे किसी आखा कोई आखण जाए जे भूला होई नानक आपे करे कराए नामे नाम समावणे माज महला तीजा आपे रंगे सह समाए गुरु का शब्द रंग चढ़ाए मंत्र रत्ता रसना रंग चुनुली पै पै रंग चढ़ावणे हम वारी जियो वारी निरभो मन वसावणे गुरु कृपा ते हर निरभो त्याया बिख भौजल शब्द तरावणे रहाउ मन मुखमुख करे चित्राई नाता धोता साए न पाई जे आया ते आ जासी करे अवगुण पछुतावणे मन मुख इंदे किसु न सूझै मर लिखाए आए नी बूझै मन मुख कर्म करे नी पाए बिन आवै जन्म गवावणे सच करणी शब्द सार पाई पूरा गुर पाई मोह द्वार अंदर बाणी शब्द सुनाए सच राते रंग रंगावणे रसना हर सराती रंग लाए मंत्र मोया सह सवाए सहजे प्रीतम प्यारा पाया सहजे सहज मिलावणे जिस अंदर रंग सोई गुण गावै गुर का शब्द सहजे सुख समावै हम बलवारी सतन विटों गुर सेवा चित लावणे सचा सचो सच भतीजा गुर प्रसादी अंदर पीजा वै सुधान हर गुण गावै आपे कर सत मनावणे जिसनु नजर करे सो पाए गुर प्रसादी हो मैं जाए नानक नाम समने अंतर दर सचा सोभा पावणे माज महला तीजा सतगुरु सेव्या वड्डी वड्याई हर जी चिंत वसै मने आई हर जी सबरियो बिरखाए अमृत जिन पीता तिस तिखा लहावणे हो वारी जी ओ वारी सतसंगत मेल मिलावणे हर सतसंगत आपे मेला गुर शब्दी हर गुण गावणे रहो सतगुरु सेवी सब सुहाया जिन हर का नाम मन वसाया निर्मल होमा मैल गवाए दर सचा सोभा पावणे बिन गुरु नाम न पाया जाए सिद्ध साधु रहे बिन लाए बिन गुरु सेवे सुख न होई पूरा भाग गुर पावणे ए मन आरसी को गुरमुख वेखा मूर्छा न लागा जा होवा सुख अनत बाणी निर्मल शब्द बजाए गुर शब्दी सच समावणे मेरे सतगुरु केव न देखा जाए गुर कृपा कर आप दिता दिखाए आपे आप आ मिल रहा सजे सह समावणे गुरु मोवा सो एक सोले लाए दूजा परम गुरु शब्द लाए काया अंदर बणज करे वापारा नाम निधान सच पावणे गुरमुख करणी हर कीर्त सार गुरु पाए मोह द्वार अंदर रंग रता गुण गावे अंदर महल बुलावणे सतगुरु दाता मिला मिलाया पूरा भाग मन शब्द साया नानक नाम मिले वड्याई हर सचे के गुण गावणे माज महला तीजा आवजाए तां सब कुछ पाए गुर शब्दी सची लेव लाए सच वणंजा सच संग्रह सच वपार करावणे हो वारी जी ओ वारी हर गुण अंदर गावणे हो तेरा दूठा कर मेरा शब्द उड्याई देवणे रहो वेला वक्त सब सोया जे सचा मेरे मन पाया सचे सेवा सच वड्याई गुरु कृपा ते सच पावणे पाओ भोजन सतगुरु तुठा पाए अरस चुक अरस मन वसाए सच संतोख सच सुखमाणी पूरे गुरते पावणे सतगुरु ना सेवा मूर्ख अंध गवारा फिर किथे पोहन फिर ओए किथों पान मुख द्वारा मरमर जमै फिर फिर आवां जमदर चोटा गावणे शब्द सा जाणा ता पछाणा निर्वाणी शब्द बखाणा सचे सेव सदा सुख पावन नौ निदना मन वसावणे सो थान सोया जो हर मन पाया सतसंगत वै हर गुण गाया अंधन हर सलाए सचा निर्मल नाथ बजावणे मनो खोटी रास खोटा पसारा कूट कुमावन दुख लागा भारा भरवे पूले फिर दिन राती मर जन्म जन्म गवावणे सचा सा मैं अत प्यारा पूरे गुरु का शब्द आरा नानक नाम मिले वड्याई दुख समकर जानणे माज महला तीजा तेरी अखाणी तेरी अबण बिना वस परम पुराणी गुरु सेवा ते हर नाम पाया बिन सतगुरु कोई न पावणे हो वारी जियो वारी हर से तीज तलावणे हर सचा गुरु भगती पाया सजे मन वसावणे रहो सतगुरु सेवे तां सब कुछ पाए जे ही मनशा कर लागा ते आफल पाए सतगुरु दाता सबना वथू का पूरा भाग मिलावणे ए मन मैला एक ना त्याए अंतर मैल लागी पौ दूजा पाए तट तीर्थ पसंद संतर भवै अहंकारी होर वधेरै हो मैं मल लावणे सतगुरु सेवे तां मल जाए जीवत मरै हर सिउ चित लाए हर निर्मल सच मैल ना लागा सत लागा मैल गवावणे वाहिगुरु है अंध गुबारा ज्ञानी अंधा अंध अंधारा बिष्टा गए कीड़ा बिष्टा कुमावै फिर बिष्टा माए पचावणे मुक्ते सेवे मुक्ता हो वै हो मैं ममता शब्द देखो वै अंधन हाजी सचा सेवी पूरा भाग गुर पावणे आपे बख्शे मेल मिलाए गुर पूरे आपे बख्शे मेल मिलाए पूरे गुरते नाम निध पाए सचा नाम सदा मन सचा सच सेवे दुख गवावणे सदा हजूर दूर न जाणो गुर शब्दी हर अंत पछाणो नान राम मिले वड्याई पूरे गुरते पावणे माज महला तीजा ऐथे साचे सुहागा साचे मन सचा सचा शब्द राचे सचा सेवन सचा सेवन सच कुमावै सचो सच कुमावणे हो वारी जी ओ वारी सचा नाम मन वसावणे सचे सेवन सच समावै सचे के गुण गावणे रहाउ पंडित पढ़ साधना पावा दूजा पाए माया मन प्रभावै माया मोहि सब सोध गवाई कर अवगुण पछो तावणे सतगुरु मिलै तां तत पाए हर का नाम मन वसाए शब्द मरै मन मारै मुक्ति शब्द मरै मर मारै अपना मुक्ति कदर पावणे कृपा काटा क्रोधन वारे गुरु का शब्द रखा उतारे सच रते सदा बैरागी होमा मार मिलावणे
अंतर रत्न मिला मिलाया त्रिविध मनसा त्रिविध माया पड़ पड़ंत मुनि थके चौथे पद की सार न पावणे आ आपे रंगे रंग चढ़ाए से जन राते गुरु शब्द न गाए हर रंग चढ़िया तो पारा हर रास रास गुण गावणे आ ਗੁਰਮੁਖ ਰਸੇ ਸਤ ਸੰਜਮ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਮੁਕਤ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖਾਰ ਸਚ ਸਮਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖਾਰ ਸਚ ਕਮਾਵੈ ਸੱਚੇ ਸਤ ਸਮਾਵਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਥਾਪੇ ਥਾਪ ਥਾਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤ ਪਦ ਸਭ ਆਪੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਉਤਪਤ ਪਾਲੋ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਆ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਉਤ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਤਾ ਸਭ ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਏ ਸਮਾਵਣਿਆ ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਗੁਰਪੂਰਾ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ ਗੁਰਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣ ਕਾ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ ਰਹਾਉ ਗੁਰਮੁਖ ਧਰਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵਣ ਬੈਸੰਤਰ ਖੇਲੈ ਵਡਾਣੀ ਸੋ ਨਿਗੁਰਾ ਜੋ ਮਰਮਰ ਜੰਮਾ ਨਿਗੁਰੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣੇ ਆ ਤਿਨ ਕਰਤਾ ਖੇ ਰਚਾਇਆ ਕਾ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਮਹਿਲੇ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਵਣੇ ਆ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਬਣਜਾਰੇ ਸੱਚ ਬਣਜਾ ਗੁਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰੇ ਸੱਚ ਵਿਆਜਿਆ ਸੱਚ ਕਮਾਵਾਂ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣੇ ਆ ਬਿਨ ਰਾਸ਼ੀ ਕੋ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਮਨ ਭੂਲੇ ਲੋਕ ਆਏ ਬਿਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਭ ਖਾਲੀ ਚੱਲੇ ਖਾਲੀ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣੇ ਆ ਇੱਕ ਸੱਚ ਬਣਜਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ਆਏ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪਾਵਣੇ ਆ ਅੰਤਰ ਵਸ ਮੂੜਾ ਵਾਰ ਭਾਲੇ ਮਨ ਮੁਕੁੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਤਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਥ ਹੋਇਆ ਤਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇ ਮਨ ਪੁਰਮ ਪੁਲਾਵਣੇ ਆਉ ਆਪੇ ਦੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਬੁਲਾਏ ਮਹਿਲੀ ਮਹਿਲ ਸਹਿ ਸੁਖ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਾਏ ਆਪੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਧਿਆਵਣੇ ਆ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣਾਈ ਹਰ ਚਿੱਤ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਿਖਾਈ ਹਰ ਗੋਚਰਣਾ ਤੋਂ ਜੋਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਭਾਏ ਪਾਵਣੇ ਆਮ ਹੋ ਵਾਰੀ ਜੀ ਉਹ ਵਾਰੀ ਆਪ ਨਿਵਾਰਣੇ ਆਓ ਗਵਾਏ ਤਾਂ ਹਰ ਭਾਈ ਹਰ ਸਿਉਂ ਸਹਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ਰਹਾਓ ਗੁਰੂ ਲਿਖਾ ਸੋ ਕਰਮ ਘੁਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਪਾਵਾਂ ਗੁਰ ਪਾਈਆ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਤਰਾ ਸੰਸਾਰੇ ਗੁਰ ਕਹਿ ਤੁਕੀਆ ਨਾਮ ਉਧਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਰ ਕਰੇ ਕਹਿ ਤਿਸ ਨੂੰ ਆਪੇ ਖਾਪ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣਿਆ ਮਨ ਹੋਇੰਦੇ ਸੁਧਰਾਂ ਕਾਈ ਆਦਮ ਘਾਤੀ ਹੈ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰ ਬਹੁ ਭਾਰ ਉਠਾਵੈ ਬਿਨ ਮਜੂਰੀ ਭਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵਣਿਆ ਇਹ ਜਗਵਾੜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਲੀ ਸਾ ਸਮਾਲੇ ਕੋ ਨਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਜਈ ਵਾਸਨਾ ਪਾਏ ਤੇਈ ਵਰਤਾ ਵਾਸੂ ਵਾਜਣਾ ਬਣਿਆ ਮਨ ਮਰੋਗੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰਾ ਸੁਧਾ ਤਾ ਵਿਸਰਾ ਗੁਮ ਪਾਰਾ ਦੁਖੀ ਨਿਤ ਫਿਰੈ ਵਿਲਾ ਦੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ ਜਿਨ ਕੀਤੇ ਸੋਈ ਵਿਧ ਜਾਣਾ ਆਪ ਕਰੇ ਤਾ ਹੁਕਮ ਵਿਛਾਣਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਤੇ ਆ ਵਰਤਾ ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਪਾਵਣਿਆ ਤਿਸ ਬਾਜੋ ਸੱਚੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਇ ਲਏ ਸੁਨਿਰਮਲ ਹੋਈ ਨਾਨੂ ਨਾਮ ਸਕਟ ਅੰਤਰ ਜਿਸ ਦੇਵਾ ਸੋ ਪਾਵਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਹਮਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਵਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਚਲਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵਣਿਆ ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਜੀ ਉਹ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਸਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆ ਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲੈ ਸਤਮੁਖ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੈ ਪਰਖਾ ਸਦਨਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਕਹਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਅਮਰਾਇ ਆਖ ਸੁਣਾਵਣਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਗਰ ਤਾਲੇ ਬਲਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਬੋਲੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮਨ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਵਣਿਆ ਸੋ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਜੋ ਚੇਤਨਾ ਹੋਈ ਤਿਸਦਾ ਹੁਕਮ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਹੁਕਮੇ ਵਰਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੁਕਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਵਣਿਆ ਆਯੋ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹਰ ਕੇਰੇ ਇਹ ਮਨ ਭੁੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੋਚ ਲਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜਾਵਣੇ ਆ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਲੋਕ ਸਮਾਏ ਪਰ ਖਰੇ ਪਰਖ ਖਜਾਨੇ ਪਾਏ ਖੋਟੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਣੇ ਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਵੇਖਾਂ ਕਿਉਂ ਸਲਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਭ ਸਲਾਈ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸਾ ਤੂੰ ਭਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਵਣੇ ਆ

रख तू सब करे तेरा कराया, एक ना बख्शै मेल लै गुरमति तुद लाया, एक खड़े करै तेरी चाकरी विड़नावै होर ना पाया, और कार बेकार है एक सच्ची कार लाया, पुत गलत कुटुंब है एक अलिप्त रहे जो तुद पाया, ओह अंदरो बाहरो निर्मले सच्चा ना इस माया। श्लोक मतलब पहला, सुने कै पर्वत गुफा करी कै पाड़ी पयाल, कै वज धरती कै आकाशी उर्द कर उर्द रहा सिर भार, पुर कर काया कपड़ पहरा धोवा सदाकार, बगा रत्ता पीला काला बेदा करी पुकार, होए कुचील रहा मल धारी दुर्मत मत विकार, ना हो ना मैं ना हो होवा नानक शब्द विचार। मला पहला, वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संजम होवै, अंतर मैल लगी नहीं जाना, बाहरों मल मल धोवै, अंधा भूल पया जम जाले, वस्त पराई अपनी कर जाना, होमै विच दुख काले, नानक गुरमुख होमै तुटै ता हर हर नाम त्यावै, नाम जपे नाम वारा दे नामे सुख समावै। पवड़ी, काया हंस संजोग मेल मिलाया, तिन ही किया विजोग जद पाया, मूर्ख भोगे भोग दुख सबाया, सुखो उठे रोग पाप कमाया, हरखो सोग विजोग पाए खपाया, मूर्ख गणत गड़ाए झगड़ा पाया, सतगुर हाथ ने बेड़ झगड़ चुकाया, करता करे सहोग ना चलै चलाया। श्लोक वाला पहला, कूड़ बोल मुरदार खाए अवरी नो समझावन जाए, मुठा आ मुहाए साथ है नानक ऐसा आगू जापै। महला चौथा, जिस दे अंदर सच है सो सच्चा नाम मुख सच अलाए, ओहो हर मार्ग आप चलदा होर नानो हर मार्ग पाए, जे अगे तीर्थ होए ता मल लहै छप्पड़ नहातै सगवी मल लाए, तीर्थ पूरा सतगुरु जो अंदन हर हर नाम त्याए, ओह आप छुटा कुटम स्यो दे हर हर नाम सब सृष्ट छड़ाए, नानक तिस पलहारणै जो आप जपै अवरा नाम जपाए। पौड़ी, एक कंद मूल चुन खाए वन खंड वासा, एक भगवा वेस कर फिरै जोगी सन्यासा, अंदर तृष्णा बहुत छादर भोजन किया सा, बिरथा जन्म गवाए ना गिर ही ना उदासा, जमकाल सिरो ना उतरै त्रिबिद मनसा, गुरमत काल ना आवै नेड़ै जा होवै दासन दासा, सच्चा शब्द सच मन कर ही माहिओ दासा, नानक सतगुर सेवर आपड़ा से आसा ते निरासा। श्लोक पहला पहला, जे रत लगै कपड़ै जामा होए पलीत, जो रत पीवै मानसा तिन क्यों निर्मल चीत, नानक डाउ खुदाए का दिल हच्छै मुखले, अवर दिवाजे दुनी के झूठे अवल करे। मला पहला, जा हो नाही ता क्या आखा किह नाही क्या होवा, कीता करड़ा कहया कथना भरया भर भर धोवा, आप न बुझा लोक बुझाई ऐसा आगू होआ, नानक अंधा होए कै दसे राह है सब सुभाए साथ है, अगे गया मोहे मोह पाए सो ऐसा आगू जापै। पौड़ी, महारुति सब तू घड़ी मूर्त विचारा, तू गणतै कनै ना पायो सच्चे अलख पारा, पढ़िया मूर्ख आखिया जिस लभ लोभ अंकारा, नाव पढ़िया नाव बुझिया गुरमति विचारा, गुरमति नाव धन खटिया भक्ति परे भंडारा, निर्मल नाम मन्या दर सच्चा सच्चियारा, जिस दा जियो पराण है अंतर जोत पारा, सच्चा शाह एक तू होर जागत वड़जारा। श्लोक वाला पहला, मेहर मसीत सिदक मुसल्ला हक हलाल कुरान, सर्म सुन्नत सील रोजा मोह मुसलमान, करनी काबा सच पीर कलमा कर्म निवाज, तस्बी सात तिस भावसी नानक रखै लाज। वाला पहला, हक पराया नानका उस सुअर उस गाए, गुर पीर हामा ता भरे जा मुर्दा न खाए, गली पिसदा जाइए छुट्टै सच कबाए, मारण पाहे हराम मैं होए हलाल ना जाए,
नानकली कूड़ी कूड़ो पल्ला पाए मला पहला पांच निवाजा वक्त पांच पंजा पंजे नाओ पहला सच हलाल दोए तीजा खैर खुदाए चौथी नियत रास मन पंजवी सिफत सुनाए करनी कलमा आख कै ता मुसलमान सदाए नानक जेते कूड़े यार कूड़े कूड़ी पाए पौड़ी एक रतन पदार्थ वर्ज दे एक कच्चा देवा पारा एक रतन पदार्थ वर्ज दे एक कच्चा देवा पारा सतगुर तुठै पाईन अंदर रतन पदार भंडारा विण गुर किनै न लद्या अंधे पौंक मोए कुड़ियारा मनमुख दूजा पच मोए ना बूझै विचारा एक सुबाजो दूजा को नहीं किस अग्गै करे पुकारा एक निर्धन सदा भौंक दे एक ना परे तुजारा विण नावै होर तन नाही होर बिख्या सब छारा नानक आप कराए करे आप हुक्म सवार हारा श्लोक वाला पहला मुसलमान कहावन मुश्किल जा होए ता मुसलमान कहावै अवल औल दीन कर मिठा मस्कल माना माल मुसावै होए मुस्लिम दीन मुहाणै मरन जीवन का भरम चुकावै रब की रजाए मन्ने सिर उपर करता मन्ने आप गवावै तौ नानक सर्ब जिया में रमत होए ता मुसलमान कहावै महला चौथा पर हर काम क्रोध झूठ निंदा तज माया अहंकार चुकावै तज काम कामनी मोह तजै ता अंजन माह निरंजन पावै तज मान अभिमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राव लिव लावै नानक साचा मन वसै सा शब्द हर नाम सुमावै पौड़ी राजे रैयत सिकदार कोय न रैसियो हट पटन बाजार हुक्मी ढैसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाड़े अपने दर परे पंडारी ते एक खड़े ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे बाग मिलख घर बार किथे से अपने तंबू पलंग निवार सराचे लालती नारक सजदा तार सिनाखत कुदरती श्लोक वाला पहला नदिया होवै तेड़वा सुम होवै दुध घीओ सगली धरती शक्कर होवै खुशी करे नित जियो पर्वत सोएडा रूपा होवै हीरे लाल जड़ाओ भी तू है सालाहड़ा आखण लहना चाओ मल्ला पहला पार अठारह मेवा होवै गरुड़ा होए सुआओ चंद सूरज दोए फिर दे रखिए निचल होवै थाओ भी तू है सालाहड़ा आखड़ लहना चाओ बल्ला पहला जे दे है दुख लाइए पाप करे दोएरा रत पीने राजे सिरे ऊपर रखिए एवे जापे पाओ पी तू है सालाहड़ा आखड़ लह ना चाओ मला पहला अग्गी पाला कपड़ होवे खाड़ा होवे बाओ सुरगे दिया मोहनिया इस्त्रिया होवन नानक सबो जाओ पी तू है सालाहड़ा आखण लह ना चाओ पवड़ी बद फैली बैगाना खसम ना जानी सो कहिए देवाना आप ना पछाड़ी कले बुरी संसार वादे खपिए विड़दावे विड़दावे वेकार भरबे पचिए राह दोवे एक जाड़े सोई सिज सी कुफर गो कुफराड़े पया दज सी सब दुनिया सुबहान सच समाइये सिज्जै दर्दी वाड़ आप गवाइये महला पहला श्लोक सो जीव्या जिस मन वस्या सोए नानक अवर ना जीवै कोय जे जीवै पथ लथी जाए सब हराम जेता किछ खाए राज रंग माल रंग रंग रता नचै डंग नानक ठगया मुठा जाए विड़ना वै पत गया गवाए महला पहला क्या खादा क्या पैदा होए जा मरना ही सच्चा सोए क्या मेवा क्या क्यों गुड़ मिठा क्या मैदा क्या मांस क्या मेवा क्या क्यों गुड़ मिठा क्या मैदा क्या मांस क्या कपड़ क्या सेर सुखाड़ी कीचा भोग बिलास क्या लश्कर का नेब खवासी आवे महली वास नानक सच्चे नाम वेण सबो
टोल विनास पवड़ी जाति दै क्या हाथ सच परखिया मोहरा होवे हाथ मरिया चखिया सच्चे की सरकार जुग जुग जाड़िया हुक्म मने सरदार दर्दी बाड़िया फुरमानी है कार खसु पठाया तबल बाज भी चार शब्द सुड़ाया एक होए असवार एक ना साखती एक ना एक दी बदे पहार एक ना ताखती श्लोक वाला पहला जा पक्का ता कट्टे आ रही सुपलरवाड़ सण की सारा चिथिया कड़ लया तर झाड़ दोए पुड़ चक्की जोड़ कै पीसड़ आए बहेठ जो दर रहे सो उबरे नानक अजब डिठ महला पहला वेख जे मिठा कट्टिया कट कुट बद्दा पाए खुंडा अंदर रख कै देर सुमल सजाए रस कस टटर पाई है तपै तै विड़लाए पीसो फोग संभाली है दिचै अग जलाए नानक मिठा पित पित पत्री है नानक मिठा पत्री है वेखो लोका आए पवड़ी एक ना मरन ना चित आस कनेरिया मर मर जम्मै नित किसै ना हेरिया अपनड़ै मन चित कहन चंगेरिया जमरा जह नित नित मनमुख हेरिया मनमुख लूड़ हारा मिक्या ना जानिया बदे करन सलाब खसबड़ा पाड़िया मनमुख लोड़ हार आव क्या ना जाड़िया बदे करण सलाव खसबड़ा पाड़िया सच मिले मुख नाम साहेब भावसी कर सड़ तख्त सलाव लिखिया पावसी महला पहला श्लोक मच्छी तारू क्या करे पंखी क्या आकाश पत्थर पाला क्या करे खुसरे क्या कर वास कुत्ते चंदन लाइया पीसो कुत्ता तात बोला जे समझाइया पढ़िया सिमरत पाठ अंदा चानन रखिया दीवे दीवे बले पचास चौड़े सोयड़ा पाइया चुड़ चुड़ खावे घास लोहा मारन पाइया जह न होए कपास नानक मूर्ख एह गुड़ बोले सदा विगा विड़ास बोले सदा विड़ास मतलब पहला कहा कज्जर तुटै सार अग्नि गांड पाए लोहार गोरी सेती तुटै पतार पुत्ती गांड पवै संसार राजा मंगै दित्तै गांड पाए भुखिया गांड पवै जा खाए काला गांड नदिया मीही झोल गांड प्रीति मिठे बोल बेदा गांड बोले सच कोए मोया गांड नेकी सत होए एत गांड वरतै संसार मूर्ख गंड पवै मुहमार नारक आखे एहो बिचार सिफती गंड पवै दरबार पौड़ी आपे कुदरत साजक है आपे करे विचार एक खोटे एक खरे आपे परखड़हार खरे खजाना पाई है खोटे सटिया बाहरवार खोटे सच्ची दरगाह सुटिया किस आगे करे पुकार सतगुर पिछे भज पवै एहा करड़ी सार सतगुर खोट्यो खरे करे शब्द सवारण हार सच्ची दरगाह मनियन गुर कह प्रेम प्यार गर्त तिनादी को क्या करे जो आप बख्शे करतार श्लोक वाला पहला हम जेर जमी दुनिया पीरा मसाय काराया मेरवद बादशाह अफजू खुदाए एक तू ही एक तू ही मल्ला पहला ना देव दानवांदरा ना सिद साध का तरा अस्त एक दिगर कोई एक तू ही मल्ला पहला ना दादे देहंद आदमी ना सप्त से जेर जमी अस्त एक दिगर कोई एक तू ही मल्ला पहला ना सूरस असमंडलो ना सप्त दीप नह जलो अन पौन थिर ना कोई एक तू ही मल्ला पहला ना रिजक दस्त आक से हमारा एक आस वसे अस्त एक दिगर कोई एक तू ही मल्ला पहला परंदे ना गिराह चर दरखत आब आस कर देहंद सोई एक तुई मला पहला नानक लिलार लिखिया सोए बेटना साकै कोए कला तरह हिरा सोई एक तुई पौड़ी सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जाड़िया गुरमति आप गवाए सच पछाड़िया सच तेरा दरबार शब्द दिशाड़िया सच्चा शब्द विचार सच सबाड़िया मनमुख सदा कुड़ियार भरम भुलाणिया विष्टा अंदरवा साधना जाणिया विड़नावै दुख पाए आवड़ जाड़िया नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया श्लोक वाला पहला
चीहा बाजा चरगा कहिया इना खवाले का का खान तिना मास खवाले ए चलायरा नदिया विच टिब्बे दे खाले थली करे असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे स्वा जेते जी जी वैले साहा जी वाले ताके साह नानक ज्यों ज्यों सच्चे भाव है त्यों त्यों दे गिरा। मतलब पहला एक मास हारी एक तृढ़ खाए एक ना छत्ती अमृत पाए एक मिट्टिया मह मिट्टिया खाए एक पौल सुमारी पौल सुमार एक निरंकारी नाम आधार जी वै दाता मरे न कोये नारक मुठे जाए ना ही मन सोए। पौड़ी पूरे गुर की कार करव कमाईया गुरमति आप गवाए नाम त्याईया दूजी कार अलग जन्म गवाईया विड़नावे सब विस पै जय खाईया सच्चा शब्द सलाह सच समाईया विड़ सतगुर सेवे नाही सुख निवास विड़ सतगुर सेवे नाही सुख निवास फिर आईया दुनिया खोटी रास कूड़ कमाईया नानक सच खरा सलाह पत स्यो जाईया। श्लोक बल्ला पहला तुध पावै ता वावै गावै तुध पावै जल नावै जा तुध पावै ता करै बिभूता सिंगी नाद वजावै जा तुध पावै ता पड़ै कते बामुला से कहावै जा तुध पावै ता होवै राजे रस कस बहुत कबावै जा तुध पावै तेग वगावै सिर मुंडी कट जावै जा तुध पावै जाहिद संतर सुन गल्ला घर आवै जा तुद पावे नायर चावे तुद पाड़े तू पावे नानक एक है बेनती और सगले कूड़ कमावे। मतलब पहला जा तू वड्डा सब वड़ियाईया चंगा चंगा होई जा तू सच्चा ता सब को सच्चा कूड़ा कूड़ा कोई ना हो कोई जा तू सच्चा ता सब को सच्चा कूड़ा कोई ना कोई आखण वेखण बोलन चलण जीवन मरना तहात हुक्म साज हुक्म विच रखै नानक सच्चा आप पौड़ी सतगुर सेव निसंग परम चुकाई है सतगुर आखै कार सुकार कमाई है सतगुर होए दयाल दा नाम त्याई है लाहा भगत सुसार गुरमुख पाई है मनमुख कूड़ गुबार कूड़ कमाई है सच्चै सच्चे दै दर जाए सच जवाई है सच्चा अंदर महल सच बुलाई है नानक सच सदा सच्चार सच समाइया। श्लोक मतलब पहला कल का तीरा जे का साई तर्म पंख कर उड रहा कूड़ अमाव सच चंद्रमा दिसे नाही कह चढ़िया हो पहाड़ विकुन्नी होई आ दे रह राह न कोई विच हम मैं कर दुख रोई कोह नानक किन बेद गत होई। मतलब तीजा कल कीरत प्रगट चानण संसार गुरमुख कोई उतरै पार जिसनो नदर करे तिस देवै नानक गुरमुख रतन सो लेवै। पौड़ी भगता तैसै सारिया जोड़ कदे ना आया करता आप भुल है ना भुलै दिस किसै दा भुलाया भगत आपे मेलियन जिनी सचो सच कबाया सह सारी आप खवायन जिनी कूड़ बोल बोल बिख खाया चलन सार ना जाननी काम क्रोध विस वधाया भगत करन हर चाकरी जिनी अनदिन नाम ते आया दासन दासन दास होए कै जिनी विचो आप गवाया उन्ना खसबै कै दर मुख उजले सच्चा शब्द सहाया। श्लोक बला पहला सुबाही सालाह जिनी त्याया एक मन सही सच्चे शाह वक्त है उपर लड़ मोए दूजे बहुते राह मन गया मती खिंडिया बहुत पै असका गोते खाए ना निकलै तीजे मोहि गिरा भुख तिखा दोए भौकिया खादा होए सुआ भी खाड़े स्यो दोस्ती चौथे आई ऊंग अखी बीट पवार गया पी उठ रचियो वाद सह वरिया की पिड़ बदी सबे वेला वक्त सब जे अठी पाओ होए नानक साहिब मन वसै सच्चा नावण होए। मला दूजा सही पूरे शाह जिनी पूरा पाया अठी वे परवाह रहड़ इक तै रग दर्शन रूप अथा विरले पाईऐ कर्म पूरा पूरा गुरु पूरा जाका बोल कर्म पूरा पूरा गुरु पूरा जाका बोल नानक पूरा जे करे कटै ना ही तोल। पौड़ी
जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुठी तंदै चोर मैं न पाई है इन चित कठोर सेव गवाई है जित घट सच ना पाए सुपन कढ़ाई है क्यों कर पूरा वट तोल तुलाई है कोई ना आखे घट हमें जाइए लयन खरे परख दरबी नाई है सौदा एक तहट पूरा गुर पाई है श्लोक मला दूजा अठी पहरी अठ अठ खंड नावा खंड शरीर तिस विच नौ निद नाम एक भालै गुड़ी गहीर कर्मवंती सा लाहया नानक कर गुर पीर चौथे पहर सुबाह कै सुरत्या उपजै चाओ तिना दरियावा तिना दरियावा स्यों दोस्ती मन मुख सच्चा नाव उथै अमृत वंडी है कर्मी होय पसाओ कंचन काया कसिया वन्नी चढ़ा चढ़ाओ जे होवे नदर सराफ की बढ़ ना पाई ता सती पहरी सत पढ़ा बहिया पढ़िया पास उथे पाप पुन बिचारी है कूड़े कट्टे रास उथे खोटे सट्टी है खरे कीचे शाबाश बोलन फादल नानका दुख सुख खसमे पास महला दूजा पौन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात द्वेदाई दाया खेलै सगल जगत चंगिया या बुरिया या वाचे धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले और केती छुट्टी नाल पौड़ी सच्चा भोजन भाओ सतगुर दस्या सच्चे ही पतियाए सच विगस्या सच्चे कोट गिराए निज कर वस्या सतगुर तुठे नाओ प्रेम रहस्या सच्चा दी सच्चा दै दी बाण कूड़ ना जानी है सच्चा दै दी बाण कूड़ ना जाइए सतगुर तुठे नाओ प्रेम रहस्या सच्चा दै दी बाण कूड़ ना जाइए झूठो झूठ विखाड़ सुबैल खुआइए सच्चे शब्द निशाड़ ठाक ना पाइए सच सुण बुझ विखाड़ मैल बुलाइए श्लोक वाला पहला पहरा अगन हे वै कर बादा पोजन सार कराई सगले दुख पाड़ी कर पीवा धरती हाक चलाई तर तारा जी अंबर तोली पिछे टंक चढ़ाई एवड़ वद्दा मावा नाही सब सह नथ चलाई एता तान होवै मन अंदर करी पे आख कराई जेवड़ साहेब ते वरदाती दे दे करे रजाई नानक नदर करे जिस उपर सच नाम वड़ियाई महला दूजा आखड़ आख न रजिया सुनन न रजे कन अखी देख न रजिया गुण गाहक एक वन भुखिया भुख न उतरै गली भुख न जाए नानक भुखा तार जाए जा गुण कह गुणी सुमाए पौड़ी विड़ सच्चे सब कूड़ कूड़ कबाई है विड़ सच्चे कुड़ियार बन चलाई है विड़ सच्चे तर छार छार रलाई है विड़ सच्चे सब भुख जे पैजै खाई है विड़ सच्चे दरबार कूड़ ना विड़ सच्चे दरबार कूड़ ना पाई है कूड़ै लालच लग मैल खवाई है सब जग ठगियो ठग आई है जाई है तन मह तृष्णा अग शब्द बुझाई है श्लोक वाला पहला नानक गुर संतोख रुख तरब फुल फल ज्ञान रस रसिया हरियास दा पक्कै कर्म ध्यान पत के साध खादा लहै दाना कै सिरदान महला पहला सोयने का बिरख पत परवाला फुल जवे हर लाल तित फल रतन लगै मुख पाखित हिरदै हिरदै निहाल नानक कर्म होवै मुख मस्तक लिखिया होवै लेख अठ सठ तीर्थ गुर की चरणी पूजै सदा विसेख हंस हेत लोभ चोप चारे हंस हेत लोभ चोप लोभ कोप हंस हेत

ततूरा निम फल तुमितमा विस आक ततूरा निम फल मन मुख वसै तिस जिस तू आवे तू चित न आवे मन मुख वसै तिस जिस तू चित न आवे नानक कहिए किस हंडन कर्मा बाहरे महला पहला मत पंखेरु किरत साथ कब उत्तम कब नीच कब चंदन कब अक डाल कब उच्चा परीत नानक हुक्म चलाइया साहिब लगी रीत पौड़ी केते कह वखाड़ कह कह जावड़े वेद कह वख्याल अलतदा पावड़े पढ़े नाही भेद बुझे पावणा खट दर्शन कह पेख किस सच सुबावड़ा सच्चा पुरख लख शब सुहावड़ा मने नाव बिसंख दरगा पावड़ा खालक को आदेश ढाडी गावड़ा नानक जुग जुग एक मन सावड़ा श्लोक मला दूजा मंत्री होए अठू हया नागी लगे जाए आवड़ हथी आपड़ दे कूचा आपे लाए हुकुम पया तुर खसबका अति हू तक्का खाए गुरमुख स्यो मन मुख अड़ै डुबे हक दयाए द्वासरिया आपे खसब वेख कर व्यो पाए नानक ए वै जाड़िया सब किछ तिसै रजाए मला दूजा नानक परखे आप को ता पारख जाड़ रोग दारू दो वै बुझे ता वैद सुजाड़ वाट ना करी मामला जाने मेहमान मूल जान गल्ला करे हान लाए हान लब न चली सच रह सो विष्ट परवान सर संदे आगास को क्यों पहुंचे बाण अगे ओ अगम है वाहे दड़ जान पौड़ी नारी पुरख प्यार प्रेम सिंगारिया करन भगत दिन रात न रहनी वारिया मैला मंज निवास शब्द सवारिया सच कहन अरदास सेवे चारिया सोहन खसमै पास हुक्म सिधारिया सखी कहन अरदास मनो प्यारिया बिनना वै त्रिगवास फिट सुजीव्या शब्द सवारी आस अमृत पीव्या श्लोक वाला पहला मारू मीहना तृप्तया अगल अगी लहना पुख राजा राजा तृप्तया सायर परे किसोक नानक सच्चे नाम की किती पुछा पुछ वाला दूजा नेफलंग तस जन्मस जावत ब्राह्मणा बिंद ते सागरंग संसारस गुर प्रसादी तरह के करण कर समरथ है कौ नानक विचार कारण करते वस है जिन कल रखी तार पौड़ी खसम कह दरबार ढाडी वसया सच्चा खसम कलाड़ कमल विगसया खसमो पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरसया सच्चा सतगुर सेवन सच्चा मार्ग दसया सच्चा शब्द विचार काल विदौसया ढाडी कथे अकथ शब्द सवारिया नानक गुण गहरास हर जियो मिले प्यारिया श्लोक वाला पहला कत्यो जम्मे खत्ते करन ता खत्या विच पाए तोते मुँह ना उतरै जे सो तोवड़ पाए नानक बख्शे बख्शी है नहता पाही पाए मला पहला नानक बोलण चखड़ा दुख छाड़ मंगिया सुख सुख दुख दो एक दर कपड़े पहरै जाए मनुख जिथै बोलण हारिया तिथै चंगी चुप पौड़ी चारे कुंडा देख अंदर पालिया सच्चा पुरख लख सिर निहालिया उजड़ भुले राह गुरवे खालिया सतगुर सच्चे वाह सच संभालिया पाया रतन करा दीवा बालिया सच्चा शब्द सलाह सुखिए सच वालिया डरिया डर लग गर्व से गालिया ना वो भुला जग फिर बेतालिया श्लोक वाला तीजा भै विच जमै भै मरै पी पाओ मन मह होए नानक भै विच जे मरै सहला आया सोए मला तीजा भै विच जीवै बहुत बहुत खुशिया खुशी कबाए नानक भै विण जे मरै मोए कालै उठ जाए पौड़ी सतगुर होए दयाल ता शरदा पूरी है सतगुर होए दयाल ना कबू झूरी है सतगुर होए दयाल ता दुख ना जाड़ी है सतगुर होए दयाल ता हर रंग माणी है सतगुर होए दयाल ता जब का डर के हा सतगुर होए दयाल ता सद ही सुख दे हा सतगुर होए दयाल ता नवरित पाई है सतगुर होए दयाल ता सच सबाई है।

0: ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਖੋਹਾਏ ਪੀਐ ਮਲ ਮਲਵਾੜੀ ਜੂਠਾ ਮੰਗ ਮੰਗ ਖਾਹੀ ਫੋਲ ਫਦੀਹਤ ਬੋਹ ਲੈਣ ਭੜਾਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਸਗਾਹੀ ਪੇਡਾ ਵਾਗੀ ਸਿਰ ਖੋਹਾਇਣ ਭਰੀਅਣ ਹੱਥ ਸੁਆਹੀ ਬਾਉ ਪੀਓ ਕਿਰਤ ਗਵਾਇਣ ਟੱਬਰ ਰੋਵੜ ਤਾਹੀ ਓਨਾ ਪਿੰਡ ਨਾ ਪਤਲ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਦੀਵਾ ਬੋਏ ਕਿਥਾਉ ਪਾਹੀ ਅੜਸੜ ਤੀਰਥ ਦੇਰ ਨਾ ਢੋਈ ਬ੍ਰਹਮਣ ਅਨ ਨਾ ਖਾਹੀ ਸਦਾ ਕੁਚੀਲ ਰਹਿ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕੇ ਨਾਹੀ ਝੁੰਡੀ ਪਾਏ ਬਹਿਰ ਨਿਤ ਬਰਣੈ ਦੜ ਦੀ ਬਾਰ ਬਾੜ ਨਾ ਜਾਹੀ ਲੱਕੀ ਕਾਸੇ ਹੱਥੀ ਫੁੰਬੜ ਅੱਗੋ ਪਿੱਛੀ ਜਾਹੀ ਨਾ ਓਏ ਜੋਗੀ ਨਾ ਓਏ ਜੰਗਮ ਨਾ ਓਏ ਕਾਜੀ ਬੋਲਾ ਦਇ ਵਿਗੋਏ ਫਿਰੈ ਵਿਗੁੱਤੇ ਫਿੱਟਾ ਵੱਤੈ ਗੱਲਾ ਜੀਆ ਬਾਰ ਜੀ ਵਾਲੇ ਸੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਖੈ ਦਾਨੋ ਤੈ ਇਸ਼ ਦਾਨੋ ਵੱਜੇ ਪਸ ਪਈ ਸਿਰ ਖੁੱਤੈ ਪਾੜੀ ਵਿੱਚੋ ਰਤਨ ਉਪਨੇ ਮੇਰ ਕੀਆ ਬਾਧਾੜੀ ਅੜਸੜ ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਥਾਪੇ ਪੁਰਬੀ ਲੱਗੈ ਬਾੜੀ ਨਾਏ ਨਿਵਾਜਾ ਨਾ ਤੈ ਪੂਜਾ ਨਾਵਣ ਸਦਾ ਸੁਜਾੜੀ ਬੋਇਆ ਜੀ ਵਧਿਆ ਗੱਤ ਹੋਵੈ ਜਾ ਸਿਰ ਪਾਈਐ ਪਾੜੀ ਨਾਨਕ ਸਿਰ ਖੁੱਤੇ ਸਹਿ ਤਾੜੀ ਏਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਵੁੱਠੈ ਹੋਇਐ ਹੋਏ ਬਲਾਵਲ ਜੀਆ ਜੁਗਤ ਸੁਬਾੜੀ ਵੁੱਠੈ ਅੰਨ ਕਬਾਦ ਕਪਾਹਾ ਸਭ ਸਹਿ ਪੜਦਾ ਹੋਵੈ ਵੁੱਠੇ ਕਾਹ ਚਰੈ ਨਿਤ ਸੁਰਹੀ ਸਾ ਧਰ ਦਹੀ ਵਿਲੋਵੈ ਤਿਤ ਕਹਿ ਹੋਮ ਜਗ ਸਦ ਪੂਜਾ ਪੈਯੈ ਕਰ ਸੋਹੈ ਗੁਰੂ ਸਬੁੱਧ ਨਦੀ ਸਭ ਸਿੱਖੀ ਨਾਤੈ ਜਿਤ ਵੜਿਆਈ ਨਾਨਕ ਜੇ ਸਿਰ ਖੁੱਤੇ ਨਾਵੜ ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਚੱਟੇ ਸਿਰ ਛਾਈ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਅੱਗੀ ਪਾਲਾ ਕੇ ਕਰੇ ਸੂਰਜ ਕੇ ਹੀ ਰਾਤ
1: ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਕਿਆ ਜਾਤ ਧਰਤੀ ਤੀਜੀ ਕੇ ਕਰੇ ਜਿਸ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਪਤ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਪਤ ਰੱਖੇ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਧ ਸੱਚੇ ਸੁਭਾਨ ਸਦਾ ਕਲਾਣਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਹੋਰ ਆਵਣ ਜਾਣਿਆ ਸੱਚ ਜੇ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਸੇ ਤੁਧੈ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸ਼ਬਦੇ ਸੋਹਿਆ ਮੰਨਿਏ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੁਧੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਰਮੀ ਪਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਚਲੈ ਚਲਾਇਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਦਾ ਤਾਰ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਦੇਖਿਆ ਆਖ ਬੁਝਾਇਆ ਸਿਫਤੀ ਸੱਚ ਸਿਮਿਓ ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪ ਬੁਝਾਈ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਜਿਸ ਆਪ ਸੁਜਾਏ ਤਿਸ ਸਭ ਕੀ ਸੂਝੈ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਥਨਾ ਮਾਇਆ ਲੂਜੇ ਹੁਕਮੀ ਸਗਲ ਕਰੇ ਆਕਾਰ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ ਅੱਖਰ ਨਾਨਕ ਅਖਿਓ ਆਪ ਲਹਿ ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾਤ ਪੌੜੀ ਹੋਂ ਟਾਡੀ ਬੇਕਾਰ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ ਰਾਤ ਦਹਿ ਕੈ ਵਾਰ ਧੁਰੋਂ ਫੁਰਮਾਇਆ ਟਾਡੀ ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ ਖਸਮ ਬੁਲਾਇਆ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਸੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਆਇਆ ਗੁਰਮਤੀ ਖਾਧਾ ਰੱਜ ਤਿੰਨ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਢਾਡੀ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਲਾਹੇ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸੁਧ ਰਾ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਦੋ ਪਦੇ ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੌ ਮੁੱਚ ਪਾਰਾ ਵੱਡਾ ਤੋਲ ਮਨ ਮਤ ਹੌਲੀ ਬੋਲੈ ਬੋਲ ਸਿਰ ਤਰ ਚਲੀਏ ਸਹੀਏ ਪਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਪੈ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਲੰਗਸ ਪਾਰ ਪੈ ਪੌ ਰਾਖਿਆ ਪਾਏ ਸਵਾਰ ਹਾਉ ਪੈ ਤਨ ਅਗਨ ਪਖੈ ਪੈ ਨਾਲ ਪੈ ਪੌ ਕਰੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰ ਪੈ ਬਿਨ ਕਾੜਤ ਕੱਚ ਨਿਕੱਚ ਅੰਧਾ ਸੱਚਾ ਅੰਧੀ ਸੱਟ ਬੁੱਧੀ ਬਾਜੀ ਉਪਜੇ ਚਾਓ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣ ਪਵੇ ਨਾ ਤਾਓ ਨਾਨਕ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਣ ਬਾਓ ਅੰਧਾ ਅੱਖਰ ਬਾਓ ਦੁਆਓ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰ ਕਰ ਘਰ ਡਰ ਡਰ ਡਰ ਜਾਏ ਸੋ ਡਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਡਰ ਡਰ ਪਾਏ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜੀਆ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਜੋ ਕਿਛ ਵਰਤੇ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਜਾਏ ਡਰੀਏ ਜੇ ਡਰ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਡਰ ਡਰ ਡਰ ਨਾ ਮਨ ਕਾ ਸੋਰ ਰਹਾਓ ਨਾ ਜੀਓ ਮਰੈ ਨਾ ਡੂਬੈ ਤਰੈ ਜਿਨ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਹੁਕਮੇ ਆਵੈ ਹੁਕਮੇ ਜਾਏ ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਹੰਸ ਹੇਤ ਆਸਾ ਅਸਮਾਨ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਨੈ ਸਾਨ ਪੌ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਧਾਰ ਬਿਨ ਖਾਦੇ ਮਰ ਹੋਏ ਗਵਾਰ ਜਿਸ ਕਾ ਕੋਏ ਕੋਈ ਕੋਏ ਕੋਏ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਏ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਜੰਤ ਤਨ ਮਾਲ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਬਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਤਾ ਮਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਸਤ ਭਾਈ ਕਰ ਇਹੋ ਵਿਸੇਖ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ कीमत नहीं पाए रहाओ। सरम सुरत दोए ससुर पए, करनी कामण कर मन ले। शाह संजोग ब्याह बिजोग, सच संतत कह नानक जो। गौड़ी महला पहला, पौने पानी अग्नि का मेल। चंचल चप्पल बुद्ध का खेल, नौ दरवाजे दसवां द्वार। बुजरे ज्ञानी एहो विचार, कथता बक्ता सुनता सोई। आ बिचारे सो ज्ञानी होई रहाओ। देही माटी बोले बोले पौन, बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन। मुई सोत बाद हंकार, ओह ना मुआ जो देखन हार। जय कांत तीरथ जाही, रतन पदार्थ कट ही माही। पर पंडित बाद बखाने, पीतर होंदी बस ना जाने। हो ना मुआ मेरी मुई बुलाए, ओह ना मुआ जो रहा समाए। कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नद न आया। गौड़ी महला पहला दखनी, सुन सुन बूझे माने नाउ। ता के सद बलिहारे जाऊ, आप लाए ठाव न ठाऊ। तू समझावे मेल मिलाओ, ना मिले चले मैं नाल। बिनावे बादी सब काल रहाओ। खेती बंज नावे की ओट, पाप पुन बीज की पोट। काम करो जी मैं चोट, ना बिसार चले मन खोट। साचे गुर की साची सीख, तन मन शीतल साच परीख। जल पुराण रस कमल परीख, शब्द ते मीठे रस ईख। हुक्म संजोगी गढ़ दस द्वार, पंच बसे मिल जोत पार। आप तुले आपे बनजार, नानक नाम सवारन हार। गौड़ी महला पहला, जातो जाए कहां ते आवे। कह उपजे कह जाए समावे, क्यों बाध्यो क्यों मुक्ति पावे। क्यों अविनाशी सहज समावे, नाम हृदय अमृत मुख नाम। नर हर नाम नर हर नह काम रहाओ। सहजे आवे सहजे जाए, मन ते उपजे मन माहे समाए। गुरमुख मुक्तो बंध न पाए, शब्द विचार छुट्टे हर नाए। तरवर पंखी बह निस्वास, सुख दुखिया मन मोह विनाश। साज बिहाग तके आगास, दै दिस तावे कर्म लिखियास। नाम संजोगी गोल थाट, काम कुद फूटे बिख माट। बिन बखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट। साध मिले पूरब संजोग, साच रहसे पूरे हर लोग। मन तन दे ले सहज सुभाए, नानक तिनके लागो पाए। गौड़ी महला पहला, काम क्रोध माया मैं चीत। झूठ बिकार जागे हित चीत, पूंजी पाप लोभ की कीत। तर तारी मन नाम सचीत, वाह वाह साचे मैं तेरी टेक। हाँ पापी तू निर्मल एक रहाओ। अग्नि पानी बोले पड़वाओ, जेवा इंद्री एक स्वाओ। दिष्ट बिकारी नाही पौ पाओ, आप मारे ता पाए नाम। शाद मरे फिर मर न होए, बिन मुए क्यों पूरा होए। पर पांच ब्याह पर हा मन दोए, थिर नारायण करे सो होए। बोहित जड़ो ज आवे बार, ठाके बोहित दरगा मार। सच सलाही तन गुरुद्वार, नानक दार कर एक अंकार। गौड़ी महला पहला, उल्ट्यों कमल ब्रह्म विचार। अमृत हर गगन दस द्वार, त्रिपवन बेद्या आप मुरार। रे मन मेरे भरम न कीजै, मन माने अमृत रस पीजै रहाओ। जन्म जीत मन मन मानिया, आप मुआ मन मन ते जानिया। नजर पही कर कर ते जानिया, जत सत तीर्थ मजन नाम। अधिक बिथार करो किस काम, नर नारायण अंतर जाम। आन मुनो तो पर कर जाऊं, किस जाचो नाही को थाम। नानक गुरमत सहज समाओ, गौड़ी महला पहला। सतगुरु मिले सो मन दिखाए, मन रहन रस अंतर पहाए। गर्व निवार गगन पुर पाए, मन लिखाए आए नहीं रहना। हर हर जाप रहन हर शरना रहाओ। सतगुरु मिले तां दुबदा पागे, कमल बिगास मन हर प्रभ लागे। जीवत मरे महारस आगे, सतगुर मिले सच संजम सूचा। गुर की पौड़ी ऊंचो ऊंचा, कर मिले जम का पमूचा। गुर मिले मिल अंक समाया, कर कृपा कर महल दिखाया। नानक हमे मार मिलाया, गौड़ी महला पहला। किरत प्या नह मेटे कोए, क्या जाना क्या आगे होए। जो तिस पाना सोई हुआ, अवन कने वाला दुआ। ना जाना कर्म केवल तेरी दात, कर्म तर्म तेरे नाम की जात रहाओ। तू एवड दाता देवन हार, तोड़ नही तो पग पंडार। किया गर्व न आवे रास, जियो पिंड सब तेरे पास। तू मार जिवाले बख्श मिलाए, जो पावी त्यों नाम जपाए। तू दाना बिना साचा सिर मेरा, गुरमत दे भरोसे तेरा। ਤਨ ਮਹਿ ਮਹਿਲ ਨਾਹੀ ਮਦਾਤਾ ਗੁਰਬਚਨੀ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ ਤੇਰਾ ਤਾਣ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣਾ ਭਗਤ ਸ਼ਰਨਾਈ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਨ ਅਕਥ ਕਹਾਇਆ ਅਪਿਓ ਪਿਆਇਆ ਅਨ ਭੈ ਬਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਕਿਆ ਡਰੀਏ ਡਰ ਡਰੇ ਸਮਾਨਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣਾ ਰਹਾਉ ਜਿਸ ਨਰ ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਰਾਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਾਹੇ ਸਵਾਰੇ ਸਾਂਝ ਬਿਆਲ ਇਤ ਉਤ ਮਨੁਖ ਬਾਦੇ ਕਾਲ ਐਨਿਸ ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸੇ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਮ ਦੂਰੇ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਮਰੇ ਤਰੇ ਗੁਣ ਹਿਤਕਾਰ ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਕਥੇ ਆਕਾਰ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਕਹੇ ਬਖਿਆਨ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਜਾਨ ਰਾਮ ਪਤ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਰਨਾ ਬਹੁੜ ਜਨ ਨਾ ਹੋਏ ਹੈ ਮਨ ਰਹਾਓ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਏ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸ ਪੰਡਿਤ ਮੁਖ ਸੋਈ ਬਿਨ ਗੁਰ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਭਗਤ ਹਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਆਨੰਦ ਗੁਰਮਤ ਪਾਏ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਦੇਖ ਦਿਖਾਇਆ ਆਸਾ ਮਾਹੀ ਨਿਰਾਸ ਬੁਝਾਇਆ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਚਰਨੀ ਮਰਦਾਤਾ ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਇਆ ਰਹੇ ਸੁਖਾਲੀ ਬਾਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਲੱਭ ਲੋ ਮੁੱਚ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ ਬਹੁਤ ਉਠਾਵੇ ਪਹਾਰ ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਰੁਲਦੀ ਦੇਖੀ ਜੋ ਤਰ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੀ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਰਹਿਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ ਬਹੁੜ ਨਾ ਆਵੇ ਬਾਰੀ ਰਹਾਉ ਹੋ ਤੁਦ ਆਖਾ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਮਾਰੀ ਨਿੰਦਾ ਚਿੰਦਾ ਕਰੇ ਪਰਾਈ ਝੂਠੀ ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਬੇਰ ਪਰਾਈ ਜੋਹੇ ਜੀੜੇ ਕਰੇ ਚੋਰੀ ਬੁਰਿਆਈ ਹੱਸ ਤਰਿਆ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਇਹ ਛੁੱਟੜ ਹੋਈ ਇਹ ਨਾਰੀ ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਰਹੀ ਇਹ ਸੁਪਨੰਤਰ ਤੁਦ ਕਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕਰ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕਿਛ ਲੀਆ ਤਾਂ ਮਨ ਭੱਲਾ ਪਾਇਆ ਹਲਤ ਨਾ ਸੋਭਾ ਭਲਤ ਨਾ ਟੋਈ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਹੋ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਰਹਾਉ ਤਾਜੀ ਤੁਰਕੀ ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਕੱਪੜ ਕੇਰੇ ਪਾਰਾ ਕਿਸੀ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਨਕ ਚੜ ਚੜ ਪਏ ਗਵਾਰਾ ਕੂਜਾ ਮੇਵਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਚ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਦੇ ਦੇ ਨੀਵ ਦੀਵਾਰ ਉਸਾਰੀ ਪਸ ਮੰਦਰ ਕੀ ਢੇਰੀ ਸੰਚੇ ਸੰਚ ਨ ਦਈ ਕਿਸੀ ਆਂਦ ਜਾਣੇ ਪਸ ਮੇਰੀ ਸੋਇਨ ਲੰਕਾ ਸੋਇਨ ਮਾੜੀ ਸੰਪੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੇਰੀ ਸੁਣ ਮੂਰਖ ਮਨ ਅਜਾਣਾ ਹੋ ਗਏ ਤਿਸੇ ਕਾ ਭਾਣਾ ਰਹਾਓ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰ ਪਾਰਾ ਹਮ ਤਿਸਕੇ ਬਨਜਾਰੇ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਰਾਸ ਤਿਸੇ ਕੀ ਮਾਰ ਆਪੇ ਜੀ ਵਾਲੇ ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਕਿਉ ਰਾਖੋ ਕਰ ਬਾਰ ਮਨਾ ਮਾਰੇ ਲੂਟੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉੱਚ ਮਨਾ ਆਗੇ ਜਮ ਦਲ ਬਿਖਮ ਕਨਾ ਰਹਾਉ ਉਸਾਰ ਮੜੋਲੀ ਰਾਖੇ ਦੁਆਰਾ ਪੀਟਰ ਬੈਠੀ ਸਾਤ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇਲ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਾਮਣ ਅਵਲ ਟੇਨ ਸੋ ਪੰਚ ਜਨਾ ਟਾਹੇ ਮੜੋਲੀ ਲੂਟਿਆ ਦੇਹਰਾ ਸਾ ਤਨ ਪਕੜੀ ਏਕ ਜਨਾ ਜਮ ਡੰਡਾ ਗਲਤ ਸੰਗਲ ਪੜਿਆ ਪਾ ਗਏ ਸੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ਕਾਮਣ ਲੋੜੇ ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਮਿੱਤਰ ਲੁੜੇਨ ਸੋ ਖਾ ਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਿਨ ਕਾਰਨ ਚਾਸੀ ਜਮਪੁਰ ਬਾ ਦਾਤਾ ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਦਰਾ ਤੇ ਕਟ ਪੀਤਰ ਮੁੰਦਰਾ ਕਾਇਆ ਕੀਜੇ ਖਿੰਦਾਤਾ ਪੰਚ ਚੇਲੇ ਬਸ ਕੀਜੇ ਰਾਵਲ ਇਹ ਮਨ ਕੀਜੇ ਡੰਡਾਤਾ ਜੋਗ ਜਗਤ ਇਵ ਪਾਵਿਸਤਾ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਨਾਸਤ ਕੰਧ ਮੂਲ ਮਨ ਲਾਵਿਸਤਾ ਰਹਾਉ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਏ ਜੇ ਗੁਰ ਪਾਈਏ ਹਮ ਗੁਰ ਕੀ ਨੀ ਗੰਗਾਤਾ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਸਵਾਮੀ ਏਕ ਨ ਚੇਤਸ ਅੰਧਾਤਾ ਕਰ ਪਟੰਬ ਗਲੀ ਮਨ ਲਾਵਸ ਸੰਸਾ ਮੂਹ ਨਲ ਜਾਵਸਤਾ ਏਕ ਚਾਨੀ ਜੇ ਚਿਤ ਲਾਵੇ ਲਭ ਲੋਭ ਕੀ ਧਾਵਸਤਾ ਜਪਸ ਨਿਰੰਜਨ ਰਚਸ ਮਨਾ ਕਾਹੇ ਬੋਲੇ ਜੋਗੀ ਕਪਟਕਨਾ ਰਹਾਓ ਕਾਇਆ ਕਮਲੀ ਹਾਸੇ ਆਣਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਤਾ ਪ੍ਰਮਤ ਨਾਨਕ ਨਾਗੀ ਦਾਜੇ ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਣੀ ਤਾ ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮਨ ਏਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦ੍ਰਿੜ ਚਿੱਤ ਕੀ ਜੈ ਰੇ ਜਨਮ ਜਨ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੇ ਕਾਟਨ ਹਰ ਅਲੀ ਜੈ ਰੇ ਮਨ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਰੇ ਤੇਰੀ ਤੀਨ ਤੇਰੇ ਤੀਨ ਗੁਨਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਵੇ ਅਲੱਖ ਨਾ ਲਖਨਾ ਜਾਈ ਰੇ ਰਹਾਉ ਸੱਕਰ ਖੰਡ ਮਾਇਆ ਤਨ ਮਿੱਠੀ ਹਮ ਤੋ ਪੰਚ ਉਠਾਈ ਰੇ ਹਮ ਤੋ ਪੰਡ ਉਠਾਈ ਉਚਾਈ ਰੇ ਰਾਤ ਅਨੇਰੀ ਸੂਜਸ ਨਾਹੀ ਲੱਜ ਟੂਕ ਸਮੂਸਾ ਭਾਈ ਰੇ ਮਨ ਮੁਖ ਕਰੇ ਤੇਤਾ ਦੁੱਖ ਲਾਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲੇ ਵਡਾਈ ਰੇ ਜੋ ਕਿਨ ਜੋ ਤਿਨ ਕੀਆ ਸੋਈ ਹੋਆ ਕਿਰਤ ਨ ਮੇਟਿਆ ਜਾਈ ਰੇ ਸੁਭਰ ਪਰੇ ਨ ਹੋਵੇ ਊਣੇ ਜੋ ਰਾਤੇ ਰੰਗ ਲਾਈ ਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਪੰਖ ਹੋਵੇ ਜੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ मूड़ा के छपाई रे गौरी चेती महला पहला कत की माई बाप कत केरा के दू था वो हम आए अगन बिंब जल पीतर निपजे काहे काम उपाय मेरे साहेबा कौन जाने गुण तेरे कहे ना जानी औगन मेरे रहाओ केते रुख बिरख हम चीने केते पशु पाए केते ना कुली में आए केते पंख उड़ाए हट पटन बिज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे अगों देखे पिछों देखे तू ते कहां छपावे तट तीर्थ हम नवखन देखे हट पटन बाजारा लैके तकड़ी तोलन लागा कट ही मह बनजारा जिता समुद्र सागर नीर भरया तेते औगन हमारे दया करो किच मेहर उपावो डुबदे पत्थर तारे जीड़ा अगन बराबर तपे पीतर बगे काती पर्वत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती गौड़ी बैरागन महला पहला रैन गवाई सोए कै दिस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए नाम ना जानया राम का मुड़े फिर पाछे पछताए रे रहाओ अंता तन तन ही तरे अंत न चाहया जाए अंत को चाहन जो गए से आए अंत गवाए आपन लिया जे मिले ता सबको पागट होए कर्मा ऊपर निबड़े जे लोचे सब कोए नानक ना जिन किया सोई सार करे हुक न जापी खसम का किसे बढ़ाई दे गौड़ी बैरागन महला पहला हरनी होवा बनवसा कंद मूल चुन खाओ गुर प्रसादी मेरा सोहब मिले वार बा हो जाओ जियो मैं बंजारन राम की ते नाम बखर बापार जी रहाओ कोकिल होवा अंब बसा सहज शब्द विचार सहज सुभाई मेरा सोह मिले दर्शन रूप अपार मछली होवा जल बसा जी जंत सब सार और वार पार मेरा सोह बसे हम मिलोंगी बाह पसार नागन होवा तर बसा शब्द बसे पौ जाए नानक सदा सुहागणी जिन ज्योति जोत समाए गौड़ी पूर्वी दीप की महला पहला एक ओंकार सत गुर प्रसाद जय कर कीर्त आखिए करते का हो विचार तित कर गावो सोहिला सिबरो सिरजनहार तुम गावो मेरे निरपो का सोहिला हो वारी जाओ जित सोहिले सदा सुख होए रहा नित नित जेड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे ते जाते कवन सुमार संभ साह लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजन आसीसड़िया जो होवे साहिब से मेल कर कर एहो पहुंचा सदरे नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से दह आवन रा गौड़ी गुआरेरी महला तीजा चापदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर मिले हर मेला होई आपे मेल मिलावे सोई मेरा प्रभ सब विदा पे जाने हुक्मे मेले शाद पछाणे सतगुर कै पह परम पौ जाए पै राचे सच रंग समाए रहाओ गुर मिले हर मन वसे सुबाए मेरा प्रभ पहरा कीमत नहीं पाए शब्द सलाहे अंत न पारा वार मेरा प्रभ अक्षे बख्शन हार गुर मिले सब बुद्ध सब मत बुद्ध होए मन निर्मल बसे सच सोए साच बसे साची सवकार उत्तम करने शाद विचार गुरते साची सेवा होए गुरमुख ना पछाने कोए जीवे दाता देवनहार नानक नामे लगे प्यार गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा गुरते ज्ञान पाए जन कोए गुरते बूझे सीजे सोए गुरते सहज साच विचार गुरते पाए मुक्त द्वार पूरे पाप मिले गुर आए साचे सहज साच समाए रहाओ गुर मिले तृष्णा अग्न बुझाए गुरते शांत बसे मन आए गुरते पवित्र पावन सुच होए गुरते शब्द मिलावा होए बाज गुरु सा भरम पुलाई बिनावे बहुता दुख पाई गुरमुख होवे सो नाम ते आई दर्शन सच्चे सच्ची पत होई किसनो कहिए दाता एक सोई कृपा करे शब्द मिलावा होई मिल प्रीतम साचे गुण गावा नानक साचे साच समावा गौड़ी गुआरेरी महला तीजा सो थाओ सच मन निर्मल होए सच निवास करे सच सोए सच्ची बाणी जुग चारे जापे सब किस साचा आपे आपे कर्म होवे सतसंग मिलाए हर गुण गावे बैस सो थाए रहाओ जलो ए जेवा दूजे पाए हर असना चाखे फीका अलाए बिन बूझे तन मन फीका होए बिन आवे दुखिया चले आरो रसना हर रस चाखिया सहज सुबाए गुर की पाते सच समाए साचे राती गुशद विचार अमृत पीवे निर्मलता नाम समावे जो भांडा होए ऊंदे भांडे टिके ना कोई गुशब्दी मन नाम निवास नानक सच भांडा जिस शब्द प्यास ਗੋੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਗਾਵਤ ਰਹੇ ਮਨ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਏ ਹਮੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵੇ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਗਾਵਣ ਗਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵਤ ਰਹੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ ਮੰਤਰ ਰਾਤਾ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੈ ਰਹਾਓ ਇੱਕ ਗਾਵੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਕਰੇ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਵੇ ਬਿਸ ਬਿਨ ਅਸਨੇ ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰ ਆਪਣਾ ਪੇ ਰਾਖਿਆ ਸਦਾ ਉਰਤਹਾਰ ਭਗਤ ਕਰੇ ਮੂਰਖ ਆਪ ਜਣਾਵੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਟੱਪੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ ਨੱਚੇ ਟੱਪਿਆ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਭਗਤ ਪਾਏ ਜਨ ਸੋਏ ਭਗਤ ਬਸ਼ਲ ਭਗਤ ਕਰਾਏ ਸੋਏ ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਕੋਏ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਸਭ ਵਿਦ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨ ਮਾਰੇ ਤਾਤ ਮਰ ਜਾਏ ਬਿਨ ਮੂਏ ਕੈਸੇ ਹਰ ਪਾਏ ਮਨ ਮਰੇ ਦਾਰੂ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਬੂਝੇ ਜਨ ਸੋਏ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਬਸੇ ਮਨ ਆਈ ਰਹਾਉ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਕਾਰ ਕਮਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਵੇ ਮਨ ਮੈਂ ਮਤ ਮੈਂ ਗਲ ਮਿਕਦਾਰਾ ਗੁਰ ਅੰਕਸ ਮਾਰ ਜੀਵਾ ਲਣਹਾਰਾ ਮਨ ਅਸਾ ਸਾਧੇ ਜਨ ਕੋਏ ਆਚਾਰ ਚਰੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਮਨ ਲਿਆ ਸਵਾਰ ਹਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਜੇ ਵਿਕਾਰ ਜੋ ਤੋ ਰਾਖਿਨ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਪੇ ਹੀ ਤਾਣੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਮੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ ਬਹੁਰਾਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਭਰਮ ਪੁਲਾਨਾ ਬਹੁ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਵੇ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਣਾ ਅੰਧਾ ਕਰਤਿਆ ਅੰਦਿਨ ਬਿਹਾਨਾ ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਰੂਮੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ਰਹਾਓ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਪਛਾਤਾ ਜਗ ਜੀਵਨ ਸੇਵ ਯੁਗ ਜਾਰੇ ਜਾਤਾ ਹਮੇ ਮਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿਜਨ ਸੱਚੇ ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ ਤਾਵਤ ਬਰਜੇ ਠਾਕ ਰਹਾਏ ਨਾਮ ਨਵਨਿਧ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਬਸੇ ਮਨ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਿਆ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਨਾ ਲਾਗੇ ਜੰਪੀਰ ਆਪੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪਰਾਨਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ ਸਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ ਜਿਤ ਸੇਵੀਏ ਦਰਗਾ ਪਤ ਪਰਵਾਨਾ ਹਰ ਕੇ ਨਾ ਬਿਟੋ ਬਲ ਜਾਉ ਤੂੰ ਬਿਸਰੇ ਕਦ ਹੀ ਮਰ ਜਾਉ ਰਹਾ ਤੂੰ ਬਿਸਰੇ ਤਦ ਹੀ ਮਰ ਜਾਉ ਰਹਾਉ ਤਿੰਨ ਤੂੰ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਤੁਦ ਆਪ ਲਾਏ ਤਿੰਨ ਤੂੰ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ ਜੂ ਨੀ ਪਾਏ ਜਿਨ ਇੱਕ ਮਨ ਤੁੱਠਾ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਜਿਨ ਇੱਕ ਮਨ ਤੁੱਠਾ ਤਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਏ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਜਿਨਾ ਪੋਤੇ ਪੁੰਨ ਸੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਨਾ ਪੋਤੇ ਪੁੰਨ ਤਿਨ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤਿਨ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਤੂੰ ਅਕਥ ਕਿਉਂ ਕਥਿਆ ਜਾਹੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰਨ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਅਨੇਕ ਕੀਮਤ ਨਹਿ ਪਾਏ ਜਿਸ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ ਤੇਰੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਖਾਣੀ ਰਹਾਓ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਾਂ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਮਹਿਲੀ ਥਾਉ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਆਪੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਲਗੇ ਪਿਆਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਤਿਨ ਕੋ ਜੈਕਾਰ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਸੇ ਸਭ ਰੂਪ ਹੈ ਰੰਗਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਸਭ ਸਹਿਲੰਗਾ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵੇਖੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗਾ ਏਕ ਅਚਰਜ ਏਕੋ ਹੈ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਲਾ ਕੋਈ ਰਹਾਉ ਸਹਿਜ ਪਵੇ ਪ੍ਰਭ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਕਹਾ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਬੰਤ ਬਣਾਈ ਆਪੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜਗਾਈ ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਹੋਈ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਥਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੇ ਬੂਜੇ ਹਰ ਸੋਈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਵੇਖੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨਮੁਖ ਸੂਤਾ ਮਾਇਆ ਮੁਖ ਪਿਆਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਸੇਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਹਿਜੇ ਜਾਗੇ ਸਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਬੂਝੇ ਜਨ ਕੋਏ ਰਹਾਮ ਅਸੰਤ ਅਨਾੜੀ ਕਦੇ ਨਾ ਬੂਝੈ ਕਥਨੀ ਕਰੇ ਤੈ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਲੂਜੈ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ਕਦੇ ਨਾ ਸੀਜੈ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ ਬਿਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਤਰੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਉਧਾਰਾ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੀ ਕਾ ਜਨਮ ਚੰਡਾਲ ਕਹਿ ਕਰ ਹੋਈ ਨਾਨਕ ਨਾ ਬਿਨਾ ਕੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਆਰੇਰੀ ਸੱਚਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਸੱਚਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਹਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ ਸੱਚ ਨਾਮ ਸਮਾਹੋ ਸੁਨ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਰਾਮ ਜਪੋ ਪਉ ਜਲ ਉਤਰੋ ਪਾਰ ਹਾਓ ਪਰਮੇ ਆਵੇ ਪਰਮੇ ਜਾਏ ਇਹ ਜਗ ਜਨਮਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮਨ ਮੁਖ ਨਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ जाए। आप पुला के प्रभा पुलाया, हे जियो बिडानी चाकरी लाया, महा दुख हटे बिरथा जन्म गवाया, कृपा कर सतगुरु मिलाए, एको नाम चेते बिचों परम चुकाए, नानक नाम जपे नौ नौ दिन पाए, गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, जिना गुरमुख ते आया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पते आए, से धनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सो जी पाए, हर हर नाम जपो मेरे भाई, गुरमुख सेवा हर काल थाए पाई, रहाओ आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावे सोए, हर गुण गावे मत उत्तम होए, सहजे सहज समावे सोए, दूजे पाए न सेव्या जाए, हमें माया महा बिख खाए, पोतो कुटंब गह माय मोहया माए, मनमुख अंधा आवे जाए, हर हर नाम देवे जन सोए, अंदर भक्त गुर शब्दी होए, गुरमत बेला बुझे कोए, नानक नाम समावे सोए, गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जन कार कमावे कोई, अखोट नाम तन हर तोट न होई, ऐथे सदा सुख दे सोभा होई, ए मन मेरे भरम न कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै, रहाओ सतगु सेवे से महापुरख संसारे, आप उदरे कुल सगल निसारे, हर का नाम रखे उरत हरे, नाम ते पौजल उतरे पारे, सतगुर सेवे सदा मन दासा, होमे मार कमल परगासा, अनहद बाजे निज करवासा, नाम रते कर माहे उदासा, सतगुर सेवे तिनकी सच्ची बाणी, जुग जुग भगती आख बखाणी, अन दिन जपे हर सारंग पाणी, नानक नाम रते निह केवल निर्बाणी, गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, सतगुर मिले बड़ भाग संजोग, हृदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हत्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए, रहा ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा ते किने बिले चख डीठा, कर्म कांड बहु करे आचार, बिनावे त्रिग त्रिग हंकार, बंधन बाध्यो माया फास, जे नानक छूटे गुर परगास, महला तीजा गौड़ी बैरागन, जैसी धरती ऊपर मेघला बरसत है, क्या धरती मदे पानी नाहीं, जैसे धरती मदे पानी परगासिया, बिन पगा बरसत फिराही, बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किच करत है सोई कोई है रे, तैसे जाए समाही, रहाओ स्त्री पुरख होए के क्या उहे कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे, तुझ ही माहे समाही, इतने जन्म भूल परे से, जे जा पाया तब भूले नाही, जा का काज सोई पर जाने, जे गुर के शब्द समाही, तेरा शब्द तू है आपे परम पुकाही, नानक तत तत स्यो मिलिया, पुनरप जन्म न आही, गौड़ी बैरागन महला तीजा, सब जग काले बस है, बादा दूजे पाए, हमें कर्म कमाव दे, मनुख मेरे सजाए, मेरे मन गुरचरनी चित लाए, गुरमुख नाम निदान लै, दरगा लै छड़ाए, रहाओ लाख चौरासी परम दे, मन हट आवे जाए, गुर का शब्द न चीनियो, फिर जो नी पाए, गुरमुख आप पछाणिया, हर नाम बसिया मन आए, अंदर भक्ति रतिया, हर नामे सुख समाए, मन शब्द मरे प्रतीत होए, हमे तजे बिकार, जे नानक करमी पाईन, हर नामा भगत भंडहार, गौड़ी बैरागन महला तीजा, पेयड़े दिन चार है, हर हर लिख पाया, सोभा बंती नार है, गुरमुख गुण गाया, पेवकड़े गुण समलै, सहरे बास पाया, गुरमुख सहज समाणिया, हर हर मन पाया, ससरे पिये पिर वसे, कहो के तबिद पाइये, आप निरंजन अलख है, आपे मेल आइये, रहाओ आप ही प्रभ देह मत, हर नाम ते आइये, बड़पागी सतगुर मिले, मुख अमृत पाइये, हमें दुबदा बिन सजाए, सहजे सुख समाइये, सब आपे आप बरदा, आपे नाए लाइये, मनमुख गर्भ ना पायो, अज्ञान ए आने, सतगुर सेवा ना करे, फिर पछताने, गर्भ जोनी बस पाए दे, गर्वे गल जाने, मेरे करते ए वे भावदा, मन मुख परमाने, मेरे हर प्रभ लेख लिखाया, तुर मस्तक पूरा, हर हर नाम ते आया, पेटिया गुरसूरा, मेरा पिता माता हर नाम है, हर बंदप बीरा, हर हर बख्श मिलाए प्रभ, जन नानक कीरा, गौड़ी बैरागन महला तीजा, सतगुरु ते ज्ञान पाया हर तत बिचारा मत मलिन प्रगट पई जप नाम मुरारा सेव सख्त मिटाइया चूका अंधियारा तुर मस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाइये संत जनो जिस देख हों जीवा हर बिन चसाना जीवती गुर मेलियो हर रस पीवा रहाओ हो हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सत पुरख है जिन भगत हर दीनी जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी गुरदाता हर राय है हम अवगने आरे पापी पाथर डूब दे गुरमत हर तारे तू गुणदाता निर्मला हम अवगने आरे हर्ष नागत राख लियो मूड मुग्ध निसारे सहज आनंद सदा गुरमति हर हर मन पाते आया सज्जन हर प्रपाया कर सोहे लागाया हर दया तार प्रबेंती हर हर चेताया जन नानक मंगे तूड़ तिन जिन सत गुर पाया ग्वाड़ी ग्वारेरी महला चौथा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंडित सास सिमत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर पज मन मेरे तर पौजल तू तारी रहाओ सन्यासी विपूत लाए देह सवारी परतरे त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूरख हर आस मारी खतरी कर्म करे सूर तन पावे सूद बैस पर कित कमावे मैं मूरख हर नाम छड़ावे सब तेरी शिष्य तू आप रहा समाई गुरमुख नानक दे वड्याई मैं अंदले हर टेक टिकाई गौड़ी ग्वारेरी महला चौथा निर्गुण कथा कथा है हर की पज मिल साधु संगत जन की तर पौजल आकाश कथा सुन हर की गोविंद सा संगत मिलाए हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ जो जन ते आवे हर हर नामा तिन दासन दास करो हम रामा जन की सेवा उत्तम कामा जो हर की हर कथा सुनावे सो जन हमरे मन चित पावे जन पगरेन बड़ भागी पावे संत ना सो प्रीत बन आई जिनको लिखत लिखिया तुर पाई ते जन नानक नाम समाई गौड़ी ग्वारेरी महला चौथा माता प्रीत करे पुत खाए मीने प्रीत पई जल नहाए सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए ते हर जन हर मेलो हम प्यारे जिन मिलिया दुख जाए हमारे रहाओ ज्यो मिल बछरे गो प्रीत लगावे कामर प्रीत जा पेर कर आवे हर जन प्रीत जा हर जस गावे सारिंग प्रीत बसे जल तहारा नरपत प्रीत माया देख पसारा हर जन प्रीत जपे निरंकारा नर प्राणी प्रीत माया तन खाटे गुरसिख प्रीत गुर मिले गलाटे जन नानक प्रीत साध पग चाटे गौड़ी ग्वारेरी महला चौथा पीखक प्रीत पीख प्रभ पाए ऊखे प्रीत होवे अन खाए गुरसिख प्रीत गुर मिल अगहाए हर दर्शन देव हर आस तुम्हारी कर कृपा लोच पूर हमारी रहाओ चकवी प्रीत सूरज मुख लागे मिले प्यारे सब दुख त्यागे गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागे बशरे प्रीत खीर मुख खाए हृदय बिगसे देखे माए गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए हो सा प्रीत माया मोह काचा बिन सजाए कूरा कछ पाचा जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा गौड़ी ग्वारेरी महला चौथा सतगुर सेवा सफल है बनी जित मिल हर नाम ते आया हर तनी जिन हर जपिया तिन पीछे छूटी कणी गुर सिख हर बोलो मेरे भाई हर बोल सब पाप लह जाई रहाओ जब गुर मिलिया तब मन बस आया तावत पंच रहे हर ते आया अंधी नगरी हर गुण गाया सतगुर पग तू जिना मुख लाई तिन कूड़ ते आगे हर लिव लाई ते हर दरगाह मुख उजल पाई गुर सेवा आप हर पावे कृष्ण बल पदर गुर पग लग ते आवे नानक गुरमुख हर आप तरावे गौड़ी ग्वारी महला चौथा हर आपे जोगी डंडा तारी हर आपे रव रहा बनवारी हर आपे तप तापे लाए तारी ऐसा मेरा राम रहा भरपूर निकट बसे नाही हर दूर हा हर आपे शब्द सुतन आपे हर आपे वेखे बिगसे आपे हर आप जपाए आपे हर जापे हर आपे सारिंग अमृत हारा हर अमृत आप प्यावन हारा हर आप करे आपे निस्तारा हर आपे बेड़ी तुलहा तारा हर आपे गुरमति निस्तारा हर आपे नानक पावे पारा गौड़ी बैरागन महला चौथा शाह हमारा तू तनी जैसी तू रास देहे तैसी हम लेहे हर ना बणन जे रंग स्यों जे आप दयाल होए दे हर बन जा रे हम बन जा रे राम के हर बन ज करावे दे रास रे रहाउ लाहा हर भक्त तन खटिया हर सच्चे शाह मन पाया हर जप हर बख लदया जम जगाती ने ना आया होर बंज करे बापारिये अनंत तरंगी दुख माया ओ जेहे बंज हर लाया फल तेहा तिन पाया हर बंज सो जन करे जिस कृपाल होए प्रभ देई जे नानक शाह हर सेविया फिर लेखा मूल ना ले गौड़ी बैरागन महला चौथा जो जननी गर्भ पाती सत की कर आसा बड़ा होए तन खाट दे कर भोग बिलासा त्यों हर जन प्रीत हर राखदा दे आप हथासा मेरे राम मैं मूरख हर राख मेरे गुसैया जन की उपमा तुझे बड़ैया रहाओ मंदर कर आनंद हर हर जस मन पहावे सब रस मीठे मुख लगे जा हर गुण गावे हर जन परवार सदार है इक ही कुली सब जगत छड़ावे जो किच किया सो हर किया हर की वड्याई हर जी तेरे तू बरतदा हर पूज कराई हर पग पंडाल लहाएंदा आपे बरताई लहा हाट बिहाजिया क्या तिस चतराई जे राज बहाले ता हर गुलाम कासी को हर नाम कढाई जे नानक हर का दास है हर की वडे आई गौड़ी ग्वारेरी महला चौथा किसानी किसान करे लोचे जियो लाए हल जोते उदम करे मेरा पुत ती खाए त्यों हर जन हर हर जप करे हर आत चढ़ाए मैं मूरख की गत की जय मेरे राम गुर सतगुर सेवा हर लाए हम काम रहाओ लै तुरे सौदागरी सौदागर तावे तन खट्टे आसा करे माया मोह बदावे त्यों हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावे बिख संचे हटवाणिया वह हाट कमाए वो झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए त्यों हर जन हर तन संचया हर खर चले जाए इह माया मोह कुटंब है पाए दूजे फास गुरमती सो जन तरै जो दासन दास जन नानक नाम ते आया गुरमुख परगास गौड़ी बैरागण महला चौथा नित निंस ला रात लालच करे पर मैं परमाया वेगार फिरै वेगारियां सिर पार उठाया जो गुर की जन सेवा करे सो कर कै कम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया करके कम लाए नित हर गुण गावे हर नाम समाये रहाओ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजे अर्थ समाया कै बंदे कै डान ले कै नरपत मर जाया तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद कीचे बपात कर माया कहताई जा लाहा देता सुख मने तोटे मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अन रसाद है तितनी भूख सफे लागे जिसर आप कृपा करे सो बेचे सिर गुर आगे जन नानक हर रस तृप्तिया फिर भूख न लागे गौड़ी बैरागन महला चौथा हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दस तुम्हारा वाहिगुरु जी हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दस तुम्हारा जिन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा हो कुर्बानी गुरे अपने जिन बिछड़िया मेलिया मेरा सहजनहारा मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार मत निर्गुण हम मेला कबहू अपनी कृपा तार हमरे अवगुण बहुत बहुत है बहु बार बार हर गंत न आवे तू गुणवंता हर हर दयाल हर आपे बख्श ले हर पावे हम अपराधी राखे गुर संगति उपदेश दियो हर नाम छड़ावे तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब बिस्म होए जाए हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंदा मेरा सखा सखाए जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा सा विद तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले चुके सब सोख संतापे गौड़ी बैरागण महला चौथा कंचन नारी में जियो लोवत है मोह मीठा माया कर मंदर कोड़े खुशी मन अन रस लाया हर प्रचेतना आवे क्यों छूटा मेरे हर राया मेरे राम ए नीच कर्म हर मेरे गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे रहाओ किछ रूप नहीं किछ जात नहीं किछ ढंग ना मेरा क्या मोह लै बोले गुण बिहून नाम जपिया ना तेरा हम पापी संग गुर उबरे पुन सतगुर केरा सब जियो पिंड मुख नक दिया बर्तन को पानी अन्न खाना कपड़ पहनन दिया रस अन्न पोगाणी जिन दिए सो चेतन आवे पशु हो कर जानी सब कीता तेरा बरतदा तू अंतर जामी हम जंत बिचारे क्या करे सब खेल तुम स्वामी जन नानक हट बिहाजिया हर गुलम गुलामी गौड़ी बैरागन महला चौथा जो जननी सो तक जान पालती राखे नदर मजार अंतर बाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार तू सतगुर गुरसिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारिक हर प्रभ के है आने तन तन गुरु गुर सतगुर पादा जित हर उपदेश दे किए सियाने रहा जैसी गगन फिरंती उड़ती कपरे बागे बाली ओ राखे चीत पीछे बिच बचरे नित हृदय सार समाली त्यों गुरसिख सिख प्रीत हर हर की गुरसिख रखे जी नाली जैसे काती तीस बत्तीस है विच राखे रसना मास रत के कोई जानो मास काती के किछ हाथ है सब असगत है हर केरी त्यों सात जना की नर निंदा करे हर राखे पै जन केरी पाई मत कोई जानो किसी के किछ हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर के वास है कोई लाग ना सके बिन हर का लाया ऐसा हर नाम मन चित नितिहावो जन नानक जो अंति अस ले छड़ाया गौड़ी बैरागन महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कही है मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लहिए मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिले हो खिन खिन करी नमस्कार मेरा गुर पूरा क्यों मिले रहाओ करके पाहर मेल लिया मेरा सतगुर पूरा इच पुनी जन केरिया ले सतगुर तूरा हर भगत दड़ावे हर भगत सुने ते सतगुर मिलिए तोटा मूल न आवे हर लाभ नित दड़िए जिसको हृदय विगास है भाव दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उदरे हर गुण गावाही महला चौथा गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरे मंतन मुख हर बोली गुरमुख रंग पिया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हों गोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ रहो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब जोत सवाई हर निकट बसे हर कोली हर हर निकट बसे सब जग के अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुर पूर है सिर बेचियो गुर पहमोली हर जी अंतर बाहर तुम शरणागत तुम बड़ पुरख बडोली जन नानक अंदिन हर गुण गावे मिल सतगुरु गुर बेचोली गौड़ी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीश पुरख विदाते जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी तित मार्ग हम जाते राम मेरा मन हर से तीराते सत्संगत मिल राम रस पाया हर रामे नाम रसमाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखर हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखते लिखे दुर्मस्तक थे गुर संतोख सन्नाते दुर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप आप प्रभु ठाकुर तुम जेवड़ अव न दाते जन नानक नाम लय तहां जीवे हर जपिए हर कृपा ते गौड़ी पूरी महला चौथा करो कृपा जग जीवन दाते मेरा हर से तीम राते मेरा मन हर से तीराचे सतगुरु वचन दियो अत निर्मल जप हर हर हर मन माचे राम मेरा मन तन बेद लियो हर साचे जेह काल कै मुख जगत सब ग्रसिया गुर सतगुर के बचन हर हम बाचे रहाओ जिनको प्रीत नाही हर सेती ते साकद मूड नरकाचे तिनको जन्म मन अत पहारी बिच बिष्टा मर मर पाचे तुम दयाल शरण प्रतपालक मोको दीजे दान हर हम बजाचे हर के दास दास हम कीजे मन नृत करे कर नाचे आपे शाह बड़े प्रभु स्वामी हम बंजारे हैं ताचे मेरा मन तन जियो रास सब तेरी जय नानक के शाह प्रभु साचे गौरी पूरी महल्ला चौथा तुम दयाल सब दुख पंजन एक बिनो सुनो दे काने जिससे तुम हर जाने स्वामी सो सतगुर मेल मेरा पुराने राम हम सतगुर पार ब्रह्म करमाने हम मूढ़ मुग्ध अशुद्ध हम होते मत होते गुरु सतगुर के बचन हर महम जाने रहा जितने रस अन रस हम देखे सब इतने फीक फिकाने हर का नाम अमृत रस चाखिया मेरे सतगुरु मीठ रस गाने जिनको गुरु सतगुरु नहीं पेटिया ते साकत मूड़ देवाने तिनके कर्म हीन तुर पाए देख दीपक मुहे पचाने जिनको तुम दया कर मेलो ते हर हर सेव लगाने जय नानक हर हर हर जब प्रगटे मत गुरमत नाम समाने गौड़ी पूर्वी महला जाता मेरे मन सो प्रभु सदा नाल है स्वामी कह किथे हर पहुनसिया हर आपे बख्शल है प्रभु साचा हर आप छुड़ाए छुटिए मेरे मन जप हर हर हर मन जपिए सतगुर की कृष्ण आई भज पो मेरे मना गुर सतगुर पीछे छुटिए रहा मेरे मन सेवो सो प्रभ सर्व सुख दाता जित मिलिए निज कर बसिए गुरमुख जायल हो कर अपना कस चंदन हर जस कसिए मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम लह लहा हर मन हसिए हर हर आप दया कर देवे ता अमृत हर रस चखिए मेरे मन ना बिना जो दूजे लागे ते साकत नर जम कुटिए ते साकत चोर जिना नाम बिसारिया मन तिन कह निक न पिटिए मेरे मन सेव्य अलख निरंजन नर हर जित सेव्य लेखा छुटिए जन नानक हर प्रभु पूरे किए खिन मासा तोल ना कटिए गौड़ी पूर्वी महला चौथा हमरे प्राण बस गत प्रभ तुमरे मेरा जियो पिंड सब तेरी दया करो हर दश दिखावो मेरे मन तन लोच कनेरी राम मेरे मन तन लोच मिन हर केरी गुर कृपाल कृपा किंचत गुर किनी हर मिलिया आए प्रभ मेरी रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी जो हमरे मन चित है स्वामी साबित तुम हर जानो मेरी अंधे नाम जपी सुख पाई नित जीवा आस हर तेरी गुर सतगुर दाते पंथ बताया हर मिलिया आए प्रभ मेरी अने दिन आंद पिया बड़ पागी सा आस पूजी जन केरी जगना जगदी सर करते सब असकत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पैज जन केरी गौड़ी पूरी महला चौथा ए मनुआ खिन न टिके बहरंगी दह दह दिस चल चल हांडे गुरपुरा पाया बड़ पागी हर मंत द्रियो मन ठांडे राम हम सतगुरु लाले कांडे रहाओ हमरे दस मस्तक दाग दगाना हम करज गुरु बो सांडे पर उपकार पुन बह किया बहुत उतार परांडे जिनको प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गांडन गांडे जो पानी गागत बिंस जात है त्यो मन मुख गर्भ गलांडे हम जानिया कछु ना जाने आगे हम जानिया कछु ना जाने आगे जो हर राखे त्यों ठांडे हम पूल चुक गुर कृपा तारो जन नानक उतरे कांडे गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध गर्भो परया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखते लिखे गुर पाया मन हरले मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन बड़ा है कर डंडौत पुन बड़ा है रहा साकत हर साध ना जानिया तिन अंतर हमें कंडा है जो जो चल है चुभ है दुख पाव है जम काल सहे सिर डंडा है हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहुत सोब खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्की प्रभु तेरे राख राख बड़ बड़ा है जन नानक नाम अधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है गौड़ी पूर्वी महला चौथा इस गढ़ में हर राम राय है किच साध न पावे तीठा हर दीन दयाल अनुग्रह किया हर गुर शब्दी चख डीठा राम हर कीर्तन गुर ले मीठा रहाओ हर अगम अगोच पार ब्रह्म है मिल सतगु लाग बसीठा, जिन गुर बचन सुखाने हीरे तिन आगे आन परीठा, मन मुख हीरा अत कठोर है तिन अंतर कार करीठा, बिसियर को बहुत दूध पियाये बिख निक से फूल फलीठा, हर प्रभ आन आन मिलावो गुर साधु कस गरुड़ शब्द मुख लीठा, जे नानक गुर के लाले गोले लग संगत करुआ मीठा। गौड़ी पूर्वी महला चौथा। हर हर अर्थ शरीर हम बेचिया, पूरे गुर के आगे सतगुरु दाते नाम दड़ाया, मुख मस्तक भाग सपागे, राम गुरमत हल लिव लागे, राम कट कट रमैया रमत राम राय, गुरु शब्द गुरु लिव लागे, हाँ मन तन देवो काट गुरु को, मेरा प्रम पौ गुर बचनी भागे, अंधेरे दीपक आन जलाए, गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बिनास्यो, कर बसल ही मन जागे, साकत बदिक माया तहारी तिन जम जोहन लागे, उन सतगुरु आगे सीस ना बेचिया, ओह आव है जाहे अपागे, हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर, हम शरण प्रभु हर मांगे, जन नानक की लज पात गुरु है, सिर बेचियो सतगुरु आगे। गौड़ी पूरी महला चौथा। हम हंकारी हंकार अज्ञान मत, गुर मिले आप गवाया, हाँ मैं रोग गया सुख पाया, तन धन गुरु हराया, राम गुर के बचन हर पाया, रहाओ मेरे हीरे प्रीत राम राय की, गुर मार्ग पंथ बताया, मेरा जियो पिंड सब सतगुर आ गए, जिन बिछड़िया हर गल लाया, मेरे अंतर प्रीत लगी देखन को, गुर हृदय नाल दिखाया, सहज आनंद पिया मन मोरे, गुर आगे आप बिचाया, हम अपराध पाप बहु कीने, कर दुष्टि चोर चुराया, अब नानक शरणागत आए, हर राखो लाज हर पाया। गौरी पूरी मोहल्ला चौथा। गुरमत बाजे शब्द अनाहद, गुरमत मनुआ गावे, बड़ पागी गुर दर्शन पाया, तहन तहन गुरु लिव लावे, गुरमुख हल लिव लावे, रहो हमरा ठाकुर सतगुर पूरा, मन गुर की कार कमावे, हम माल माल तोवे पाप गुरु के, जो हर हर कथा सुनावे, हृदय गुरमत राम रसायन, जेवा हर गुण गावे, मन रसक रसक हर रस अघाने, फिर बहु न भूख लगावे, कोई करे उपाव अनेक बहुत तेरे, बिन कृपा नाम न पावे, जन नानक को हर कृपा तहरी, मत गुरमत नाम दिड़ावे। या गौड़ी माज महला चौथा। गुरमुख जिंदु जप नाम करमा, मत माता मत जियो नाम मुख रामा, संतोख पिता कर पुरख गुर पुरख अजन्मा, बड़ पागी मिल रामा, गुर जोगी पुरख मिलया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो, बड़ पागी मिल सुगड़ सजानी जियो, मेरा मन तन हर रंग पिना, आवो संतो मिल नाम जपाहा, बिच संगत नाम सदा लै लाहा जियो, कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो, मिल पूरब लिखियड़े तुर कर्मा, सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो, मन मोर को हिकेड़ा शब्द मुख पाया, हर अमृत बुठड़ा मिलया हर राया जियो, जे नानक प्रेम रतना। गौड़ी माज महला चौथा। आप सखी गुण कामन करीहा जियो, मेरे संत जना रंग माहने रलिया जियो, गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो, हर तुठे ढोल ढोल मिलिया जियो, मेरे मन तन प्रेम लगा कर हर ढोले जियो, मैं मेले मित्र सतगुर बिचोले जियो, मन देवा संता मेरा प्रभ मेले जियो, हर बिटड़े हो सदा कोले जियो, बस मेरे प्यारिया बस मेरे गोविंदा, हर कर कृपा मन वास जियो, मन चिंदेड़ा फल पाया मेरे गोविंदा, गुरपूरा वेख बिगस जियो, हर नाम मिलया सुहागणी मेरे गोविंदा, मन अंदिन अंदर हास जियो, हर पायड़ा बड़ पागी ही मेरे गोविंदा, नित लै लाहा मन हास जियो, हर आप पाए हरापे वेख है, हरापे कारे लाया जियो, एक खावे बख्श तोट न आवे, एक ना फक्का पाया जियो, एक राजे तख्त बहे नित सुखिए, एक ना भिख मंगाया जियो, सब इको शब्द बरतदा मेरे गोविंदा, जन नानक नाम तिहाया जियो। गौड़ी माज महला चौथा। मन माही मेरे गोविंदा हर रंग रता मन माही जियो हर रंग लाल नह लखिए मेरे गोविंदा गुरपूरा अलख लखाही जियो हर हर नाम परगास्या मेरे गोविंदा सब दालद दुख लह जाही जियो हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा बड़पागी नाम समाही जियो नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा किने हर प्रभ डिठड़ा नैनी जियो मेरा मन तन बहुत बैराग्या मेरे गोविंदा हर बाजो तन कुम लैनी जियो संजना मिल पाया मेरे गोविंदा मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो हर आय मिलया जग जीवन मेरे गोविंदा मैं सुख बिहानी रैनी जियो मैं मेलो संत मेरा हर प्रभ सज्जन मैं मन तन भुख लगाइया जियो और रहना सुको बिन देखे मेरे प्रीतम मैं अंतर बिरहो हलाइया जियो हर आया मेरा सज्जन प्यारा गुर मेले मेरा मन जीवाइया जियो मेरे मन तन आसा पूरिया मेरे गोविंदा हर मिलिया मन वाधाइया जियो बारी मेरे गोविंदा बारी मेरे प्यारिया हो तुद बिठो सद बारी जियो मेरे मन तन प्रेम परम का मेरे गोविंदा हर पूंजी रासख हमारी जियो सतगुरु बिष्ट मेल मेरे गोविंदा हर मेले कर रह वारी जियो हर नाम दया कर पाया मेरे गोविंदा जन नानक शरण तुम्हारी जियो मां गौड़ी माज महला जाता चौजी मेरे गोविंदा चौजी मेरे प्यारिया हर पर मेरा चौजी जियो हर आपे कान पाएदा मेरे गोविंदा हर आपे गोपी खोजी जियो हर आपे सब कट भोगदा मेरे गोविंदा आपे रसिया भोगी जियो हर सुजान ना भुली मेरे गोविंदा आपे सतगुरु जोगी जियो आपे जगत पाएदा मेरे गोविंदा हर आपे